आए राग सूही महला चौथा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर पुरख में लाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो हर हर नाम ते आए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो। गुरबाणी सब मीठी लागी पाप विकार गवाया हो मैं रोग गया पौ पागा सहजे सहज मिलाया। काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अंदन सुख माने नितरलिया नानक तुर संजोगो। सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़म आई आया बलराम जियो। संत जना कर मेल गुरबाणी गावाईया बलराम जियो। बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड परम गवाया। हम मैं पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा। मन मुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ प्रमै गावारी खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभ दाता सतगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सह सुवाए। आया लगन गणाए हिरदय तनो माहिया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पति बहवाचाइया बलराम जियो। पति वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बहमता पकाया फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरख्या गामा गोचर सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मेले विछड़ कदे ना जाई। सूही महला चौथा हर पहलड़ी ला परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ाओ पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ाओ हर नाम ते आवो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूराया राधो सब किलविख पाप गवाया। सहजानंद हो बावड भागी मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाम पहली आरंभ काज रचाया। हर दूजड़ी लाव सतगुर पुरख में लाया बलराम जियो। निरपौ पै मन होए हों मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रया पर पूरे। अंतर बाहर हर प्रवेको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए। हर तीजड़ी लाम मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया वड भागिया बलराम जियो। निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडपागी पाया हर कथिया कथ कहानी। हृदय हर हर हर तुनि उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो। हर चौथड़ी लाम मन सहज पाया हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलिया सुभाए हर मंतन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंदन हर लिव लाई मन चिंदिया फर पाया स्वामी हर नाम वजी वादाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी जन नानक बोले चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही शंत महला चौथा।

नद्र प्रभु सत्संगत पाई निज कर होवा वासा हर मंगल रस रसन रसाए नानक नाम प्रगासा अंतर रतन बिचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चालन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिंगार बनाए हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कहे सोई पर की जय नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख वी आहने आया वियाहने आया गुरमुख हर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जियो आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रापाया मैं साचा ना कदे मरे ना जाई राग सुही संत महला चौथा करती जाए को अंकार सतगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद केरे राम गुरमुख मिल रही है करवा जय शब्द कनेरे राम शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई अहनस जपी सदा सालाही साध शब्द लिवलाई आन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण है अवर न जाने दूजा सब मैं रव रहया सुप्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रव रहया सुप्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रव्या सोई गुरमत सच पाई है सहज समाई है तिस बने अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे ले मिलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम ते आए एहो जगो दुत्तर मन मुख पार न पाई राम अंतरे हम ममता काम क्रो चतराई राम अंतर चतराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावै चोटा खावै अंत गया पछताया बिन्ना मैं को बेली नाही पुत कुटंब सुत पाई नानक माया मोह पसारा गै साथ न जाई हाँ पूछो अपना सतगुर दाता किन बे दुत्तर तरिये राम सतगुर पाए चलो जीवत्या मरिये राम जीवत्या मरिये पौ जल तरिये गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया वडभागी सच नाम लिवलावै मत प्रगास पई मन मान्या राम नाम वडे आई नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई सुही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे हो मन तन देवा सतगुर मैं मिले प्रभ गुणतासे तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सा बासे वड भागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ साहा कर आवो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हाँ तद बाजो खरी ओडीनिया ज्यो जल बिन मीन मराहा वडभागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल परमिया मन मुख परम पुलाया नित आसा मन चित वै मन तृष्णा भुख लगाया अनता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम सलाहे तू बिन नाम पच पच मोया गुरसुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत विसारिया मैं अंतर वेदन प्रेम की गुरदेखत मन साधारिया वडभागी प्रव आए मिलो जन नानक खिन खिन वारिया सुही संत महला चौथा मारे सो वे जन हो मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलना दितिया देह कंचन वे वनिया इन हो मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब काल खा इन मनमुख मूड़ सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर

मानो निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरी है भौजल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वह सह ध्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हों बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सद कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे ले मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जी हो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया जिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करण हारे उपजया

तू वरदाना करमे रमत साई, कृपा की जय सामत दी जय, आठ पैर तु दिहाई। गर्भ न की जय रेण हो विजय, तांगत जी अरे तेरी, सभी उपर नानका ठाकुर मैं जेही कणचेरी। राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पिर हम बहुरिया। राम तुम वडे वडे वडूचे, हम इतनी कलहरिया। राम हाँ किश नाही एको तू है, आपे आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरणी दास है दासी, मन मौलै तन हरिया, नानक ठाकर सर्व समाना, आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माणा, तू है मेरा ताना। राम सुरत मत चतराई तेरी, तू जाना है जाना। राम सोई जाने सोई पछाणे, जाको नदर सिरंदे, मनमुख भूली बहुती राही, फाथी माया फंदे। ठाकुर पाणी सा गुणवंती, तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर, तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या, तू पर्वत मेरा ओला। राम हाँ बल जाई लख लख लख बरिया, जन परम परदा खोला। राम मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई, सोप्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा, साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बने अवर न जाना। राम मात पिता भाई सुत बंदप, जी प्राण मन पाणा। राम जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रा मेरा, सर्वरया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहार है, नानक सतगुरु बाणा। ऐसा गुरु वड भागी।

अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, करता है आप वसाया राम, करता है आप वसाया सर्व सुख पाया, पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे पूर्ण परमेश्वर, कार्य आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन एहो थान सुहाया, घर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराध है, कटिया जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभु बनासी, हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख माने रलियां, दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरे, नानक सदबल जासी, दास खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम, आद जुगाद भगतन का राखा, सो प्रपया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला, दय दिस पूर रहया जा स्वामी, कीमत कहन ना जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीवर खाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज भगत पव पवंजन, अनहद वाजे तुनिया राम, अनहद चुनकारे तत विचारे, संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराध्य मैल सब काटे, किलवे सगले खोवे, तह जन्म ना मरना आवन जाना, बहुन ना पाइय जोनी है, नानक गुर परमेसर पाया, जिस प्रसाद इच पुनी है, सूही महला पंजवा, संता के कार्य आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया, नवनिध सिद्ध रिध दीने करते, तोट न आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दास सवाई राम, दास सवाई ने खुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिघन सगले उठ नाठे, दुख ना नेड़े आया, सांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूक सवाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम, जिसका कार्य तिन्ही किया, मानस क्या वेचारा राम, भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम, गुण गाए गोविंद अंध उपजे, साध संगत संग बनी, जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी, आठ साठ तीर्थ पुन किरिया, महा निर्मल चारा, पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा, गुण निधान मेरा प्रभ करता, उसत कौन करी जय राम, संता की बेनती स्वामी, नाम महारस दी जय राम, नाम दी जय दान की जय, बिसर नाही एक खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाइए अंदनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती, मंतन अमृत पीजै, बिनवंत नानक इच पुनी, पेख दर्शन जीजै, राग सुही महला पंजवा, शंत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हौ संभल थकी जी, ओह कदे ना बोले कौरा,
कौड़ा बोल न जानै पूर्ण भगवानै औगुण को ना चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्नै कहले घट घट वासी सर्व निवासी नेरै ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहै वेश दुहागणी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोही दूजै पाए मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पदार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवै सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उरतार आग्याकारी सदा सुहागण आ मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सुहवीए निमाणी है सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुलपी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचाए उन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियान सच्ची धर्मशाला आप उपायख पाएंदा सच्चे दीन दयाला सब नारिक संभाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आवरदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सुहबता सोहागणी जा मन लह सच नाओ सतगुरे अपना मनाए लै रूप चढ़ी ता अगला दूजा नहीं थाओ ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे ना हो वही एन सलागै पाओ नानक सोहागण का क्या चहन है अंदर सच मुख उजला खसम महे समाए महला तीजा लोका वेहो सुहवी सुहा वेस करी वेसी सहना पाई है कर कर वेस रही नानक तिन्नी सहो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी ज्योत पावै सो थी है इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सचे लख्या पारा

जिस तू मिले सो तुद मिले सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूहवीए सूहा सब संसार है, जिंदुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, जो टिके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै करे आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित मिलिया हर गुण गाओ। महला तीजा। सूहा रंग विकार है, कंत ना पाया जाए। इस लैंदे बिलम ना हो वही, रंड बैठी दूजै पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहै वे सुलभाए, शब्द सच्चा रंग लाल कर पै पाए। सिंगार बनाए नानक सदा सुहागनी, जे चलन सतगुर पाए पौड़ी। आपे आपो पाया ने आप कीमत पाई, तिसदा यंत्रा जा पई गुर शब्द बुझाई। माया मोह गुबार है दूजै परमाई, मन मुख ठौर ना पाई नी फिर आवै जाई। जो तिस पावै सो थीऐ सब चलै रजाई। सलोक महला तीजा। सूहै वेस कामन को लखनी, जो प्रभ छोड़ पर पुरख धरे प्यार। ओस सील ना संजम सदा झूठ बोलै, मन मुख कर्म खुवार। जिस पूर्व होवै लिखिया ते सतगुर मिलै पतार। सूहा वेस सब उतार धरे, गल पहरै खिमा सिंगार। पेयै सहुरै बहु सोभा पाए, तिस पूज करे सब संसार। ओहर लाई किसै दी ना रलै, जिस रावे सृजनहार। नानक गुरमुख सदा सुहागणी, जिस अविनाशी पुरख परतार। महला पहला। सूहा रंग सुपनै निसी, बिन तागे गलहार। सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी, सब बुरियाइयां शार पौड़ी। एहो जग आपो पायो न कर चोज विडान, पंच तात विच पाईआ न मोह झूठ गुमान। आवै जाय पवाई है मनमुख अज्ञान, एक ना आप बुझायो न गुरमुख हर ज्ञान। भगत खजाना बख्सेओन हर नाम निदान।

सागर लहर समुंद सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ो वै आप कर आप पीना या पाहो गुरमुख सेवा थाए पवै उन मन तत्कमाहो मसक तला।

आओ तब लग प्राणीत सह सरेवो जब लग कट मैं सासा जे कट जाए ता पाओ ना जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द पसावे अंतर चूके सह प्यासा हुक्मै बूझे चौपड़ खेलै मन जन टाले पासा जो जन जान भजै अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर तेजन कबो ना हारै टाल जो जानै पासा सूही ललित कबीर जीओ एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगै हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मोको नीत दसै पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन्हो लिया उबारी रहाओ नौ डाडी दस मुंसफ धावै रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापै नाही बो बिस्टा ला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन्दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना काई संता कौ मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जा का नाओ बबे को राग सूही बाणी श्री रविदास जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद सहकी सार सुहागन जान है ताज मान सुख रलिया मान है तन मन दे न अंतर रख है अवरा देखना सुने अपक है सो कत जान है पीर पर आई जाके अंतर दर्द ना पाई रहाओ दुखी दुहागन दोए पख हीनी जे ना निरंतर भगत न कीनी पुरस लात का पंथ दुहेला संगना साथी गवन अकेला दुखिया दर्द वंद दर आया बहुत प्यास जवाब ना पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानो त्यो कर गत मेरी सूही जो दिन आवै सो दिन जाही करना

क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रवदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई। एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काट सवेरा। घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी। कह रवदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो। तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस। तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछै पछतानी। रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली। पिरे बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुई ते, तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहों बेगाना पौका स्तंताई, भगतहीण नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवा।

अगमा गोचर लाख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवरना सूजे गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हम मरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता।

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख बखाने गुरमुख होवै सो मुक्त कही है। मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रया जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ बनासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुर बोहित।

देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिलै ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साद, जो गूंगा मन में बिस्माद। आनंद रूप सब नजरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, धरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जा कावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जंपीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तने अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा जानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम आराधे नाम वखाणे, हर नाम में ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। वड भागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिन्ना वासो। अमृत नाम आराधिए निर्मल, मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जमकी काणे। तना प्राप दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाणे। ऊंच अपार

कने रे पशु प्रेत मुगत कवतारे पान पारो तारे नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा शक्ति काई सादा दासी थियो नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया धन धन हर सा जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वट पागणी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल निवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चर सरणी पाई है प्रेम बिछो ना मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पा सारा आपे बनजे आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपै सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपै जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो आप ही।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुरे आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काट है पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु धूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन ता निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए परसीना। बिलावल महला।

होवत वटभागी, सा संग्राम लिव लागी। मत पत तहन सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसराओ परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पंत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना। दया तारे अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया। कर किरपा प्रभ घर मैं आया, रहाओ भगत वछल पै कट नहारे। संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया। पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, सासंग प्रगटे नारायण। नानक दास हो सब दुख पलायण, बिलावल महला पंजवा। कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा। गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे। तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ, एक सबे नाही को दूजा। तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कछु न होवत पाई। जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया। गुण निदान प्रभ तिन ही पाया, बिलावल महला पंजवा। मात गरमै हाथ दे राखिया, हर छोड़ बिख्या फल चाखिया। भज गो बिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारै मूड़े। तब तन बिन सजाए बेहाल, रहाओ तन मन तहने अपना कर थापिया। करण हार एक निमख ना जापिया, महा मोह अंध कू परिया। पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया, वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया। संत संग नानक प्रभ पाया, बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत बंधु भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपुरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहे ना गणे, रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे। भय मनोरथ सो प्रभ जापे, अर्थ धर्म काम मोह का दाता। पूरी पई सिमर सिमर विधाता, सा संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुरियाणिया, बिलावल महला पंजवा।

निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गलै सिर पैरे। कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट ना आवै जाम। राग बिलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदे एको वंकार। सतगुर प्रसाद कवन संयोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो। रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याए। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान। रहाओ अकथ कथा अमृत प्रभानी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, सांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। रहाओ ताप पाप संता बिनासे, हर सिमरत किलविक सब नासे। अनद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मदमाता, बंधन बांध्यात बिकराल। दिन दिन शिजित बिकार करत औद, फाही फाथा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागरत भारी। उधरो साधु संगर वाला। रहाओ प्रभ सुखदाते समर्थ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। प्रम के बंधन काटो परमेसर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा, सगला नंद किया परमेसर। अपना बिरद समारिया, साजना होए कृपाला। बिकसे सब परवारिया, कार्य सतगुरे आप सवारिया। वड्डी आरजा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया। रहाओ वन त्रिण त्रिपवन हरिया, होए सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस उपर होवत दयाल, हर सिमरत काटै सो काल। रहाओ साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटै जमजाल। आपे सतगुरे आपे प्रतपाल, नानक जाचै साधरवाल। बिलावल महला पंजवां, मन मैं सिंचो हर हर नाम, अंदर कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो नेरे। रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बिलावल

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार मैं, मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम बारंगला, काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया, श्रम कर ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, अंदरे त्रिपवन सूजिया, गुरपेट पुनीता, महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल पै चीता, रहाओ ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो, तेसा पैदान दीता, सिंह बिलाई होए गयो, त्रिन मेर दखीता, श्रम करते दम आड़को, ते गनीत नीता, कवन वडाई कह सको, बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दर सरीता। बिलावल महला पंजवा, आहं बुद्ध पर बाद नीत, लोभ रसना साद, लपटो कपटो ग्रह बेदया, मिथ्या बिख्याद, ऐसी पेखी नेत्र मैं, पूरे गुर प्रसाद, राज मिलख तन जोबना, ना मैं बिन बाद, रहाओ रूप तूप सो गंधता, कापर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन, होए दुर्गाद, फिरत फिरत मानुख पया, खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया, बहु जोन परमाद, प्रभ कृपा ते गुरमिले, हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद, ताकै पूर्ण नाद। बिलावल महला पंजवा, चरण पहे संत बोए था, तरे सागर जेत, मार्ग पायो ध्यान मैं, गुरदसे पेत, हर हर हर हर हर हरे, हर हर हर हेत, उठत बैठत सोबते, हर हर हर चेत, रहाओ पंच चोर आगै पगे, जब साध संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ, गृह शोभा सेत, निहचल आसन मिटी चिंत, नाही डोलेत, परम भुलावा मिट गया, प्रभ पेखत नेत, गुण गंभीर गुण नायका, गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग, हर हर अमृत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना, ते तो बिरथारी, मिलत संग सब प्रम मिटे, गत पई हमारी, जा दिन पेटे साध मोहे, उवा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा, फिर फिरहाँ वारी, रहाओ एत छिडाई मोहे ते, इतनी दृढ़तारी, सगल रेन एहो मन पया, बिनसी अपतारी, निंद चिंद पर दुखना, एखन मैं जारी, दया माया अर निकट पेख, नाही दूरारी, तन मन शीतल पय अब, मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तानो, नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करौं तेरे दास की, पग चारा बाल, मस्तक अपना पेट देओ, गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल, निस्बासर मन अंध हो, तो चिरवत कृपाल, रहाओ जगते उदारन साध प्रभ, तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ, संतन पगराल, उक्त स्यान पो कश नहीं, नाही कश काल, ब्रह्म पै राखो मोहते, काटो जमजाल,
बिनौ करो करना पते। पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल। बिलावल महला पंजवा कीता लोड़ै सो करै, तुझ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा देह कै। जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटी है, बिनसै अहमेव सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपूर, जीवन सुख सब साध संग प्रमन सापूर। जित जित लावो तित तित लगे, सियानप सब जाली जत का तुम भरपूर हो। मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना, वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै, कलमल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया। ता ते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय परम पसना, नाम निधान नानक सुखी पेख साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै, तब होए निहाल राज मिलख सिकदारिया अग्नि में जाल। संत जना का शोहरा तिस चरणी लाग, माया तारी शत्रपात तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्वन दान, गृह साक्त शक्ति प्रकार ते बिहू समान। भगत जना का लुगरा ओढ़ नगन ना होई, साख सिर पाओ रेशमी। पहरत पत खोई साक्त स्यो मुख जोरे, आदवी चो टूटे हर जन की सेवा जो करे। इत उते छूटे सब किश तुम ही ते होवा, आप बणत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा सरवणी सुनो, हर हर हरे ठाकर जस गावो। संत चरण कर सीस तार हर नाम ते आवो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणका लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलावो, पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास न विसरे अनकत ना तावो, सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा साह संग तिस पेटे हरदाया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर घर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया। अंतरजामी आप प्रभु सब करे कराया, पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रपहराया। बिलावल महला पंजवा माटी ते जन साजिया, कर दुर्लभ देह
अनक छिद्र मन में टके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरै प्रभु मनै ते जिसके गुण ए है प्रभ तज रचे जे आन स्यों सोर लिया खे है रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे है छोड़ परपंच प्रभ स्यों रचो तज कूड़े ने है जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी ए है कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले है ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने हे दास दास को दासरा नान कर ले हे बिलावल महला पंजवा एक टे गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास जन का नामाधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार दीन दयाल कृपा निदे सास समार करण हार जो कर रहे साई वड्याई गुरपूरे उपदेसिया सुख स्मर जाई चिंत अंदेसा गणत तज जन हुकम पछाता नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तपते पई सात परसत पाप नाठे अंध कूप में गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अव्याय बहत संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिन से तिहु लोक के पाए सुखथान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बिलावल महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करना हर ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चित आए संतन कै आनंद हो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खन में थाप कीमत कहीं ना जाइए ठाकर प्रताप पेख तलीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरैण नानक जप साध साध बल जाई बिलावल महला पंजवा जल ढोवो एह सीस कर पग पख लावो बार जाओ लख बेरिया दर्स पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ ते पावो देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावो ओवा रस में सांत तृप्त होए बिख्या जलन बुझावो जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो नानक की प्रभ बेनती हर सरण समावो बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वड पागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पय सहाई जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक प्रभ मोह की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल गुरपूरै कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ
औखद हर का नाम है, जित रोग ना व्यापै, साध संग मन तन हितै, फिर दुख ना जापै। हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई, किलवख उतरै सुध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, पै ते उपजै भगत प्रभ, अंतर होए सांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ता कै सुख प्रवेश, मन की मत त्यागी सुनिया उपदेश। रहाओ सिमरत सिमरत सिमरिया, सो पुरख दातार, मन ते कबो न विसरै सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा कहो कृपा करहो प्रभ ता कहो लाभो सेव। निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कबो ना विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा, त्रिशन बुझी ममता गई, नाठे पै परमा, थित पाई आनंद पया। गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या, बिनसी मेरी पीर, तन मन तन तन मन सब शीतल पया, पाया सुखबीर। रहाओ सोवत हर जप जागया, पेख्या बिस्माद, पी अमृत तृप्ता सिया ता का अचरज स्वाद। आप मुक्त संगीत रे, कुल कुटां ब्योधारे, सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन, नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा, हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ, तान दीबान परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी, अपने दास रख लिए, निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए। रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए। कथा पुरातन इयो सुनी भगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा, बंधन काटै सो प्रभु जा कै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटिया राखो हरनाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते राखै गोपाल। राओ आसा परम विकार मोह इन मैं लोभाना, झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे, ज्यो तू राखै त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ देह अपना नाओ, नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा, कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा, खरका पैखर तव छुटै जो ऊपर लादा। रहाओ जप तप संजम तुम खंडे, जम के दुख डांड, सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत, तेस्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना, तन तन सर्बसे अपना प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा,
ਉਦਮ ਕਰਤੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖਸਾਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਜਪਤ ਹਰ ਜਪ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧ ਤੇ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾਂ ਰਹਾਉ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਬਸੇ ਸਭ ਕੈ ਮਨ ਲੋਚ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਚਿਤਵਤੇ ਨਾਹੀ ਕਛ ਪੋਚ ਧਨ ਸੋ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਧਨ ਜਹ ਜਪੀਐ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਅਤ ਘਨਾ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਭ ਕਿਛ ਹਾਥ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋਡਿਆ ਫੁਰ ਸੁਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋਤਾਇਆ ਜੀਵਤ ਆ ਅਥਵਾ ਮੋਇਆ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਜਿਨ ਇਹੋ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਕਉ ਤੇ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਰਹਾਓ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਢੈ ਕੀਰੀ ਤੇ ਅਸਤੀ ਕਰੈ ਟੂਟਾ ਲੇ ਗੰਢੈ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸਰਵ ਫਲ ਰਵੀਐ ਹਰ ਨਿਰਤ ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਨਾ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਦ ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫੇਰਾ ਖੋਜੋ ਬਨਥਾਨ ਅਸ਼ਾਲਿਆ ਸ਼ੇ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪਲਾ ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਰਹਾਓ ਵਰਨ ਆਸਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਪੰਚ ਤਤ ਠਾਕਰ ਅਬਨਾਸ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਹੈ ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀ ਸਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕੋ ਮਿਲੇ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਈਸਰ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ ਬਿਨਸੇ ਤਹ ਪਰਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟਿਆ ਜਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ।

प्रवयक में अपार वस्तु कमावत सब सुखी किश उन्ना दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करै सत थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिया होइय आरोग रामचंद की लष्टका जिन मारिया रोग। रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग साध संगत कह वारण मिलया संजोग। जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवरियो पाप सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया। गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया। रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चित वह साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रव्याप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज रामदास पुर कीने गुरदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागै नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागै। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागै उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम पागै। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै तंत मंत न जो है तित ताख न लागै। रहाओ काम क्रोध मदमान मोह बिन से अनरागै आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना।

जब लग घटसास रहाओ, मात पिता बंदप तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाइए सब भला मनावै, साध साध मुखते कहै सुनदास मिलावै। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जी सगल दयाल पै हर हर नाम चीन। रहाओ पूर रहो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा, अरदास सुनी दा तार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना सेवको मुख निंदक शार। तुझै ना जो है को मीत जन तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ। रहाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा, मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभु नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभु आप, नानक प्रभु शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवां तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रमिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवां रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवां मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवां ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभय सहाई। बिलावल महला पंजवां अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा का वड प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दुपदे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिये भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवां प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवां सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने बिसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्रह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काढ़ लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवां संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभु कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सिरजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रिया पारा। एक विस्थिर नेक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगौरी खावत है। तिरण को मंदिर साज सवारियो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मरमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो। चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो ना डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन आत्मी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे सा दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है, रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट तरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निध, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे, तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ, अन बोले कहो तुही पछाने, जो जियन मैं होता, अरे मन काए कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पए मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिए रहाओ, जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ, काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकूब मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिटे आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ, एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रखे अपने कहो, काहू ना करते कछ कीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ,

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभु नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइय हो निदान, जन्म मरण की कटिय फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटै सगल गुमान, कहो नानक ता की शरण आई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही। रहाओ कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हरता के, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरव देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही वसै साध कै संगा। रहाओ खिन मैं थाप निवाजे ठाकर, नीच कीड़ते करह रजंगा, कबहू ना बिसरै हिये मोरे ते, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै, सर्ब जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखै अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्श प्रभ मांगै, संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन कौ त्रास है। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाठा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, एहो पदार्थ वड भाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। रहाओ काढ़ कुठार खसम सिर काटिया, खिन मैं होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचया, जिन रचिया दंदी ना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ लिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल

आद मद प्रभयंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे रखे प्र मेरे को वट प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वस कीने जन सगले जंत, चरण कमल नानक शरण आई राम नाम जप निर्मल मंत्र।

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही अरे बस है, हर नाम मन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल माने, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दिख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तिरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावे त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक ते राओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल त्यगन मैं जने आप उधारे, करे अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरत श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ वीर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औध बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संग त्रवण जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

गोविंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए, वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर। मन प्रीत चंद चकोर जो मीन जल सो हेत, अल कमल पहन ना पेत ज्यों चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास ज्यों तरन भरत प्राण, ज्यों लोभिय धन दान ज्यों दूध जलै संजोग, ज्यों महा खुदियारथ भोग ज्यों मात पूतै हेत, हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग, ज्यों चोर हिरत निसंग महंग लैका मैं बंद, ज्यों ग्रस्त बिखई तंद ज्यों जुआर बिसन ना जाए, हर नानक हो मन लाए कुरंक ना दैने हो, चात्रक चाहत में हो जन जीवना सतसंग, गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले, कुल समूह कर तो उदार संसार उत्तर सुपार हर चरण बोस्तता है, मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मुरार।

एक में एक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जमदर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजण हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखा दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खाणी चारे बाणी पेदा, अष्ट दशा खड़ती ने उपाए, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंचभूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म पूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगराते एक मरतूर, एक दर कर सच देख दूर, झूठे कौ नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त ना होए, तव छूटै जां खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगत रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रब साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तौ पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साज समावै, सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच नी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमै मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए, नाओ नौमी नवे नाथ।

मोहे मछली तुम नीर, तुझ बिन क्यों सरै। मोहे चात्रक तुम बूंद, तृप्तो मुख परै। मुख परै हरे प्यास मेरी, जी हिया प्राण पते। लाडले लाड लड़ाए सामै, मिल हमारी होए गते। चीत चितवो मिटा धारे, ज्यों आस चकवी दिन चरै। नानक पयम पै प्रे संग मेली, मछली नीर ना विसरै। तन तन हमारे भाग, कर आया फिर मेरा। सोहे बंक द्वार सगला बनहरा, हर हरा स्वामी सुखैगामी। अंत मंगल रसकणा, नवल नवतन नाहो बाला। कवन रसना गुणपणा, मेरी सेज सोही देख मोही। सगल सहसा दुखरा, नानक पयम पै मेरी आस पूरी। मिले स्वामी अपरंपरा, बिलावल महला पंजवा। शांत मंगल एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सलोक। सुंदर सांत दयाल प्रभ, सर्व सुखा निध पियो। सुख सागर प्रपेटे है नान।

सत्संगति बह पाओ कर सदा हर के गुण गाए। नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद कर हर भगतां का मेली सरबत सो निसल जन टंग तार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुद अपड़ कोय ना सकै सब चख चख पवै चाड़।

वाए गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत में लाए इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद चित लाए नानक जिन को नजर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए महला तीजा सतगुर की सेवना कीतिया शब्द ना लगो पाओ हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुआओ मन हठ कर्म कमाव दे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए पौड़ी सब वड्याइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है गोहज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है सलोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दै दस पसरिया गुर कै सहे सुवाए नानक जिन अंदर सच है से जन छपै ना किसै देश पाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द सोचे नानक सहज मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई हर करता आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदय पाई निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन ओना प्राया भला ना सुखाई क्या होवै किस ही दी क्या होवै किस ही की चख मारी जा सच्चे स्यों बने आई जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब चख चख मरै लोकाई सलोक महला तीजा त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोहे माया चित लाए हर सुख पल्लर त्यागया नाम विसार दुख पाए मनमुख अज्ञानी अंधले जन्म मरै फिरे आवै जाए कार्य सिद्ध न होवनी अंत गया पछताए जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिले सो हर हर नाम ते आए नाम रते जन सदा सुख पाए न जन नानक तन बल जाए महला तीजा आसा मनसा जग मोहनी जिन मोया संसार सब को जम के चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा सो ब्रह जिस बख्शै करतार नानक गुर प्रसाद दी हो मंतांतर है जा छोड़ै हंकार आसा मनसा मारे निराश होए गुर शब्दी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई अगे सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई कूड़ यारा के मोह फिटकी है सच भगत वड्याई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंद कशाई जन नानक साचा राध्या गुरमुख सुख पाई सलोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है जे हर प्रभस करे ओ पावा सिरे ओ पाओ है नाउ प्राप्त होए अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए वड्याई होए महला तीजा ए मन गुर की

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बस है, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेख कुटल गांठ।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किश नहीं पव

तब गुण कहां जगत गोरा, जव कर्म ना नासै, सिंह शरण कत जाइय, जव जंपक ग्रासै रहाओ, एक बूंद जल कारणे

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर काहूं की जय साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश नाम वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारै तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। एह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जैसे सगत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना, मेरे माने अंतन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई, सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिनके चरण मलो हर दसना, शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, ते जन की वडियाई हर या वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुरना, जन नानक हर दान एक दीजै, नित बसे हृदय हरि मोहि चरना, गुण महला चौथा, जितने साहा पात साहा उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान, हर अबनासी सदा थर नह चलो, तिस मेरे मन भज परवान, मेरे मन नाम हरि भज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी, तिस जेवड़े अवर नाही किसे दातान, रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसे मन मेरे सब बिनस जाहे, जो रंग कुसुंभ कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगह पावे तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा, त्यों सत संगत

निमाने कहो जो दे तो मान, सगल भूखे को करता दान, गर्भ कोर मैं रखन हार, ते ठाकर कहो सदा नमस्कार। ऐसो प्रभ मन माहे ते आए, काटे आव काट जत कत सहाय रहाओ। एक रंक राव जा कै एक समान, कीट हस्त सगल पुराण, बियो पूछना मसलत तरे, जोगश करे सो आपे करे। जा का अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, घट घट घट सब घट आधार। नाम रंग भगत पै लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागे पाए। गुंड महला पंजवा, जा कै संग एहो मन निर्मल, जा कै संग हर हर सिमरन, जा कै संग किल बिख होहे नास, जा कै संग हृदय प्रगास। से संतन हर के मेरे मीत, केवल नाम गाइए जा कै नीत। रहाओ जा कै मंत्र हर हर मन वसै, जा कै उपदेश परम पवन सै, जा कै कीर्त निर्मल सार, जा कीरेन बांछे संसार। कोट पतत जा

के मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्वनिधान तेरी दृष्टि मा है, नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महा

जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार। नारायण कहत जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण। नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद। नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण। बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राखै राखण हार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है। साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोह लागे शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत ना है। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन में रुलता खाकू नाल। हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो गुडा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसै ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परंपर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेदा भेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ। संतन कै संग राम गुन गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर। राग गौ

रे महावत तुझ दारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरै त्यान, वा कर दे बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

देख इस मरते कहो जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुरप्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागद पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सर चढ़ बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई, आवत जात नाग सर।

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोईऐ, सूत बिना कैसे मणि परोईऐ, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाईऐ, साधु बिन तैसे अवगत जाईऐ। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटै, मन कूटै तो जमते छूटै, कुट कुट मन कसवट्टी लावै, सो कूटन मुक्त बहु पावै। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतियै पर चै साचै, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारै सोदै, पांच पलीतै कहो प्रबोधै, नौ नाये की भगत पछानै, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात ना करै, इंद्री कै जतन नाम उचरै, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अतरूप बिचखन गोंड। धन गोपाल धन गुरदेव, धन अनाद भूखे कवल टहकेव, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साध रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे का संग निकावन, अन्न

अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख वेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोविंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डार तेहरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड़।

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैकट काव मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेट ता लख लखाया जैसे बिखै हेत परनारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर करत नहीं दुख जमै रहाओ हर हर नक्श हरे परा।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदला वंदै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू टमकावै महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै तू कहत ही अद भवानी मूत की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

मस्तक निशानं सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार।

अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सबिर था जावै साध का निंदक कैसे

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूमदान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करे निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली।

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसिया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया सुमाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोह रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिया। जीवत आयो मरिया रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द।

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे। रहाओ भिखिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हौ तुझ कौ बलिहारिया। रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइए एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहे तुसे तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए। रहाओ हच्छ।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझै बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत पछाने, ऐसा

सो हर जनो हर प्रभु पावे, अहनस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावे रहाओ। धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुरपूरै सच समाया, गुर आदि पुरख हर पाया, सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, आराम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ। पंच बैल गड़िया देह तारी, राम कला निभ पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद यो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे ऊठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एह तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरना जोग, नै बिनसै अविनासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारे ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवारो रे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। दुतिया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक है सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक है मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां। तागा

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचै लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजै नित उदासेरा गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करन करावन सोई आना दिसै कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाओ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर परम भूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं देह बरदानी सागत इवही करत बयानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद तेल करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निरजोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेसुमार दिग ना डोलै कतहू ना तावै गुर प्रसाद को।

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत बुद्ध प्रगास, गहर गंभीर अपार गुण।

फल। इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत जम कश ना कह रहाओ, बिन हर सगल निरार्थ काम। सोना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा। इहा उहा तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे। किन्ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपै जन कोए। ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार। संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई प्रमाण। नानक दासता कै कुर्बान, राम कली महला पंजवा। सिंचै दर्ब देह दुख लोग, तेरे काज न अवरा जोग। कर अहंकार होए वरतै अंध, जम की जेवड़ी तू आगे बंद। छाड़ विडाणी तात मूड़े, इहां बसना रात मूड़े। माया कै माते तै उठ चलना, राच रहो तू संग सुपना रहाओ। बाल व्यवस्था बार के अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध। तृतीय व्यवस्था सिंचे माए, बिरद भया छोड़।

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहण न जाई रहाओ सूर बीर।

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम भाई राम कली महला पंजवां गहो कर।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठावर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जाननहार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनु अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोए। तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म। तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा। तुझ में दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ। आगे दरगे पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए। दुर्मत बिनसै

सेवा सगल से आन पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों वासा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टकाए अवरे आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान ता दरगह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवे सोई पल मान अपना तजा मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण ही सो आओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतरे पार देवनहार दा तार अंतना पारा वार जा कै कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवा दुलब दे सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुद होए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनिजै नानक सुख सहज।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंतिम ध्याई नाम।

नमो भगवंत गोसाई खालक रव रया सर्वठाई रहाओ जगनाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

चक्र पेलो हर चरण कमलो सरनाय मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावै साई तना रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे काम क्रोध मसद ही चूरे करै बेकार जिया रे कह ताई गाफल संगनत सुवा जाई धरत तोह अनक शल जान कौडी कौडी कौ खाक सिर शान जिन दिया तसेरा चेतै मूल मिथ्या लोभना उतरै सूल पार ब्रह्म जप भय दयाल इह मन होवा सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै सा समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पय गोविंद गुण गावत सा संग दुख जाए रहाओ जा कै राम बसै मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर धरै सो दासा देसा काहे करै जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुरु उपर कुर्बान गुर परमेसर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो पवजल तरै अमृत पीवाओ साध प्यारे मुखी उजर साचै दरबारे अंध करो तज सगल बेकार नानक हर जप उतरो पार राम कली।

सगले साज करत जगदीश ठगन हार अनठगदा ठग है बिन मखर फिर उठ लागे संत सभा मिल करो बखियान सिमरत शास्त्र वेद पुराण ब्रह्म विचार विचारे कोए नानक तां की परम गत होए राम कली महला पंजवा जो तिस पावे सो थिया सदा सदा हर की शरण आई प्रभिन नाही आन बिया रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै इनमें किछु ना संग लिया बिखैठ गौरी खाए भुलाना माया मंदिर त्याग गया निंदा कर कर बहुत विगुता गर्भ जोन में किरत पया पुरब कमाने छोड़ै नाही जम दूत करा स्यो महा पया बोले झूठ कमावे अवरा त्रिसना बुझे बहुत हया असाद रोग उपजया संत दुखन देह बिनासी महाखया जिने निवाजे तिन्ही साजे आपे कीने संत जया नानक दास कंठ लाए राखे कर कृपा पार ब्रह्मया राम कली महला पंजवा ऐसा पूरा गुरदेव सहाई जाका सिमरन बिरथा ना जाई रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल जाकी तूर काट जमजाल चरण कमल बसे मेरे मन के कार्य सवारे सगले तन के जाकै मस्तक रखै हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ पतो धारण कृपा निधान सदा सदा जाइए कुर्बान निर्मल मंत दे जिस दान तजै विकार बिनसे अभमान एक तिहाई है साध कै संग पाप बिनासे नाम कै रंग गुर परमेसर सगल निवास घट घट रव रया गुणतास दर्श देहे तारो प्रभ्यास नित नानक चितवै सच अरदास राग राम कली महल।

नाम जपत परम सुख पाई आवा गौण मिटै मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत प्रगास चरण कमल मैं होए निवास संत संगत मैं होए उधार नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा गुरपूरा मेरा गुरपूरा राम नाम जब सदा सुहेले सगल बिना से रोग कूरा रहाओ। एक रादो साचा सोए जाकी सरण सदा सुख होए नींद सुहेली नाम की लागी भूख हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई गुरपूरै सब चिंत मिटाई आठ पहर प्रभ का जप जाप नानक राखा हो आप। राग राम कली महला पंजवा पड़ताल करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं जलन थलन बस गगन।

दुर्मत सगल बिनासै, राम भगत मन पीजै रहाओ। मन माया मैं उर्ज रहो है, बुझे न कछ ज्ञाना, कौन नाम जग जा कै सिमरै, पावै पन निर्बाना। पय दयाल कृपाल संत जानो, तब ए बात बताई, सर्व धर्म मानो ते किए, जे प्रभ कीर्त गाई। राम नाम नर निसबासर मैं, निमक एक उर धार है, जम को त्रास मिटै, नानक तेह अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नावा, प्राणी नारायण सुध लेह, छिन छिन औध कटै निसबासर।

क्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम डंड। फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जति कहावै, माई मांग तो त्रै लोभ आवै। निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ। अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेहवा इंद्री साध लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना। त्रिबद लोगा त्रिबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए। तुझ पह नौ निद तू करना जोग, थापो थापे करे सोहोग। जत सत संजम सच सोचीत, नानक जोगी त्रि पवन मीत, रामकली महला पहला। खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तोने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सचनाम पतीना। प्राणी राम पग सुख पाई है, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाई है रहाओ। माया मोह विवर्ज समाए, सदगुर पेटा मिल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन तीरा। हम मैं ममता रोग न लागे, राम पग जम का पौ भागे, जम जम दार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे। शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी। अंधन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गति अंतर पाई। अलिप्त गुफा में रहे निरारे, तस्कर पंचो सब संगारे। पर कर जाए न मन डोलाए, सहज निरंतर रहो समाए। गुरमुख जाग रहे ओ दूता, सतवै रोगी तत्परोता। जग सूता मरिया वह जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए। अनहद शब्द वजै दिन राती, अवगत की गत गुरमुख जाति। तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहा निर्वानी। सुन समाद सहज मन राता, तजह लोभा एको जाता। गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला। साहा गणे ना करे विचार, साहे उपर एक अंकार। जिस गुर मिले सोई बिद जाने, गुरमत होए ता हुक्म पछाणे। झूठ ना बोल पांडे, सच कहिए, हम मैं जाए शब्द कर लिये रहाओ। गण गण जोत कुकंडी कीनी, पड़े सुनावे तत न चीनी। सब सही उपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदौ ना सगली शार। नावै तोवै पूजै सैला, बिन हर रातो मैलो मैला। गर्भ निवार मिलै प्रभ सार्थ, मुक्त प्राण जप हर कृतार्थ। वाचै वादना वेद विचारै, आप डुबै क्यों पितरा तारै। घट घट ब्रह्म चीनै जन कोए, सतगुर मिलै ता सोजी होए। गणत गणीय सहसा दुख जीय, गुर की शरण पवै सुखती है। कार्य अपराध शरण हम आया, गुर हर बेटे पुरब कमाया। गुर शरण ना आई है, ब्रह्म ना पाई है, परम भुलाई है, जन्म मरियाई है। जम दरबा दो मरे बेकार, नारद नाम ना शब्दाचार। एक पांदे पंडित मिश्र कहावै, दुबदारा ते महल ना पावै। जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जन अपार। एक बुरा भला सच एक, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक। गुरमुख विरली एको जानिया, आवन जाना मेट समाणिया। जिनकै हृदय एक अंकार, सर्वगुणी साचा विचार। गुर कै पाणे कर्म कमावै, नानक साचे साच समावै।
ਆਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਠ ਨਿਗਰੋ ਕਰ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ਵਰਤ ਤਪਨ ਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਅਵਰਨਾ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਸੇਵ ਮਨ ਹਰ ਜਨ ਸੰਕੀਜੈ ਜਮ ਜਨਦਾਰ ਜੋਹੇ ਨਹੀਂ ਸਕੈ ਸਰਪਨ ਡਸ ਨਾ ਸਕੈ ਹਰ ਕਾਰਸ ਪੀਜੈ ਰਹਾਉ ਵਾਦ ਪੜੈ ਰਾਗੀ ਜਗ ਪੀਜੈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਬਿਖਿਆ ਜਨਮ ਮਰੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਦੁਖ ਸਹੀਜੈ ਚਾਰਸ ਪਵਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪੀਜੈ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਖਟਕਰਮ ਕਰੀਜੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਾਸ ਲੀਜੈ ਅੰਤਰ ਪੰਚ ਅਗਨ ਕਿਉਂ ਧੀਰਜ ਤੀਜੈ ਅੰਤਰ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਰਹੀ ਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਲੀਜੈ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਤੀਰਥ ਭਰਮੀਜੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੂਚਾ ਕਿਆ ਸੋਚ ਕਰੀ ਜੈ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਦੋਸ ਕਾ ਕਉ ਦੀਜੈ ਆਨਾ ਖਾਹੇ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਥੀਜੈ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੈ ਜਨਮ ਮਰੀਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛ ਸੰਗਤ ਜਨ ਕੀ

प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुजे अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभु ते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहिब सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया मान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाम, तुम शरणागत रहो।

झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं करबार, नानक गुरमुख तत विचार। आराम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पाया। तन तन देख तो गर्भ गया, कनक काम निसो हेत वधाए हे, की नाम विसार है परम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया। पुन दान इस नान ना संयम, साध संगत बिन बाज जाया। लालच लागे नाम बिसारे हो, आवत जावत जन्म गया। जा जमत आए केस गहे मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया। बिन गुर शब्द ना गद पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया। एते उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखे, सागत मानो अभमान पाया। जिसका हो तान तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया। अंत काल के साथ ना चल, जो दी सह सप्त सह मया। आद पुरख परंपर सो प्रभु, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, सागत जंजाल पराल पया। जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो कुछ करना सो कर रहे, बख्शन हारे बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते बिरगत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया। आराम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया। सा शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना। अहनस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रह गगनपुर दृष्ट समय सुर, अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जिहवा रंग रसीना। मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, एह सतगुर देख दिखाई। जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लिखन ना जाई। दीपक ते दीपक प्रगासिया, त्रिपवन ज्योत दिखाई। सच्चा तखत सच महली बैठे, निरपव ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, कट कट किंगरी वाई। नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला, औहठ हस्त मड़ी कर छाया। तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ ममता मार, हों मैं सोख है। त्रिपवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे। सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाहद वाजे। घट घट जो तुम्हारी, परपंच बेण तही मन राखिया। ब्रह्म अगर पर जारी, पंच तत् मिल अहनस दीपक। निर्मल ज्योत अपारी, रव सस लौके होतन किंगरी। वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन अवधू। अलख गम्य पारी, काया नगरी यह मन राजा।
ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਘਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹੇ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇਹ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ

पंडी हुक्म बुझै सो जोगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै तां एह सो जी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बुझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिस ते उपजै तिस ते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जनर जाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सों लिव लाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई परम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ ना पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कहे किस पाई भक्त जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सहि समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुर्लंभ है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूज ना होवी भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवा।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर तंदै लाई, तिसै श्री बो तां सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप आपो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल न तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बढ़त बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्याव जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्ब थाई। राम कली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया परविरत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे मोहे दीन हर हर आराधे, तेरा भरोसा प्यारे आना जाना वेसा रहाओ, किन्ही गृह तज वनखंड पाया किन्ही मोन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती, किन्ही कहया हौ तीर्थवासी कोई अन्न तज पया उदासी, किन्ही पवन

बाबा पाई, कोई कहे मैं तने पसारा, मोहे दिन हर हर आधारा, किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दिन हर हर हर त्याया, किन्ही सिद्ध बहुत चेटक लाए, किन्ही पेख बहुत हाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दिन हर हर हर सेवा, कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करे आचार सुकरणी, मोहे दिन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामे ओ मन ना प्रबोदे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया, हराम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतु करया, माटी काले देहुरा करया, उक्त जोत ले सुरत परीखया, मात गर्भ में जंतु रखया, रखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ, जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी, जिन दिए

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरण आई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन यान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाचै लाए तराई। अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काल अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप्त त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। रामकली महला तीजा रामकली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली कृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्स समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो। आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जो बन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उधरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाए हे तिवै चल है जिन्ना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहे जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब जो पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया एक फिरै कनेरे करै गल्ला गली किनै ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सवाईया कहिंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है कित संजम तोता जाए मन तोहो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए।

मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखाओ विण सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कहो नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी। पीवहो अमृतो सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजाओ होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया बोलन पे रवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजाओ होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पहाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकत आपो पाए कह करता आपे हुकुम वरताए। हुकुम वरताए आप वेख गुरमुख सह बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सो लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी। ततै सार ना जानी गुरु बाजो ततै सार ना जानी। तिही गुणी संसार परम सुत।

सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अग्न उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जे ही करता खेल रचाया, जात पाणाता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै, पाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया, हर आप अमुल कहै मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटौ रहे लोक मिलाए, ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सोपीऐ विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए, हर आप अमुल कहै भागत न के नानका जिन हर पलै पाए, हर रास मेरी मन मन जारा, हर रास मेरी मन मन जारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कहे नानक हर रास मेरी मन होवा वनजारा, ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्लै ना पाए, हर रस पाए पल्लै पीए, हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए, एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसे आए, कहे नानक होर अन रस विसरे जां हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तू मैं जोत रखी तां तू जग मैं आया, हर जोत रखी तुद विच तां तू जग मैं आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया तां चलत होवा चलत नदरी आया, कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मैं आया, मन चाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापै, गुर चरण लागे दिन सुपागे अपना पिर जापै, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया इस जग मैं आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मैं आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर प्रमाण होवा जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जां वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कहे नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट होई, ए श्रवणो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए, सुनो सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया हो वरसना रस सुमाणी, सच अलख विडाणी तां की गत कही ना जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया, गुरुद्वारा लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नाम ने दो तिसदा अंत ना जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, एहो साचा सोहिला साचै कर गावहो, गावहो ता सोहिला कर साचै जिथे सदा सच ते आवहे, सचो त्यावहै जां तुद पावै गुरमुख जिन्ना बुझावहे, एहो सच सबना का खसम है जिस बख्से सो जन पावहे, कहे नानक सच सोहिला सचै कर गावहे, आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु।

सगल विसूरे दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत।

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गै लीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊ कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत न उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सरद अडंबरो असू कत के हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार किरपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जल बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद विनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने। शंत हिम कर रुत मन पावती माग फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गौ मंगलो गृह आए हर कंत जियो। गृह लाल आए मंत आए से सुंदर सोहिया वन त्रैण त्रिपवन पय हरिया देख दर्शन मोहिया। मिले स्वामी इच पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के पव जल तारनहार सब ते उचे जानिए नानक नाम प्यार। जिन जानिया सही तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारने हर जप उतरे तीर। शंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल क्लेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो। हर रंग राते सहज माते तिल ना मनते बिसरै तज आप सरणी परे चरणी सर्ब गुण जगदीश्वरै। गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद कौवा देह जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली महला पहला दखनी ओ अंकार एक ओंकार सदगुर प्रसाद। ओ अंकार ब्रह्मा उत्पत ओ अंकार किया जनचित ओ अंकार सैल जुग पए ओ अंकार वेद निर्मय। ओ अंकार शब्द उदरे ओ अंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार
ओ नम अखर उतर पवन सार, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस प्राप्त होवै चुन लै मानक मोती। समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै, अंत निरंतर साचा, गुरमुख देखै सा समाले, बिन साचे जग काचा। तदै धर्म धरे धर्मापुर, गुणकारी मन तीरा, तदै तूल पड़ै मुख मस्तक, कंचन भय मनूरा। तन तरनी तरे आपा जोनी, तोल बोल सच पूरा, करते की मित करता जाने, कह जाने गुरसूरा। ज्ञान गवाया दूजा पाया, गर्भ गले बिख खाया, गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए, गहर गंभीर गवाया। गुर सच कहया अमृत लहया, मंतन साज सुखाया, आपे गुरमुख आपे देवे, आपे अमृत पी आया। एको एक कहे सब कोई, हम मैं गर्भ व्यापै, अंतर बाहर एक पछाण, इं कर महल सियापै। प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो, एको सृष्ट सवाई, एक अंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई। इस करते कहो क्यों गह राखो, अफरियो तुल्यो न जाई, माया के देवाने प्राणी, झूठ गौरी पाई। लब लोभ मोहताज विगूते, इब तब फिर पछताई, एक सिरे वै ता गत मित पावै, आवन जान रहाई। एक आचार रंग एक रूप, पौन पानी अग्नि असरूप, एको पवर पवै तिहो लोए, एको बूझै सूझै पत होए। ज्ञान ध्यान ले समसर रहै, गुरमुख एक विरला कोल है, जिसनो दे कृपा ते सुख पाए, गुरु द्वारे आग सुनाए। ऊरम तूरम ज्योत उजाला, तीन पवन में गुर गोपाला, ऊग व्या असरूप दिखावै, कर कृपा अपने कर आवै। ऊन बरसै निजर तारा, उत्तम शब्द सवारण हारा, इस एके का जाने पे, आपे करता आपे दे। उगवै सूर असर संघार, उच्चो देख शब्द विचार, ऊपर आद अंत तिहो लोए, आपे करे कथै सुने सोए। ओह विधाता मन तन दे, ओह विधाता मन मुख सोए, प्रभ जग जीवन अवर ना कोए, नानक नाम रते पत होए। राजन राम रवै हितकार, रण में लूजै मनुआ मार, राधनंत रह रंग राता, तीन पवन जुग चारे जाता, जिन जाता सो तिसी जेहा, अत निरमायल सिज सेहा। रैसी राम हृदय पाए, अंतर शब्द साच लिव लाए, रोस ना कीजै अमृत पीजै, रहन नहीं संसारे। राजे राय रंक नहीं रहना।

गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार। अवगुणी भरपूर है गुण पी वसै नाल विण सतगुर गुण ना जपनी जिचर शब्द ना करे विचार। लश्करिया कर संभले आए वजो लिखाए कार कमावे सिर तनी लाहा पल्ले पाए। लब लोभ बुरियाइयां छोड़े मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार। चाकर कहिए खसम का सहोए उत्तर दे वजो गवाए अपना तख्त ना बैसे से प्रीतम हथ वड्याइयां जय पावे तें दे। आप करे किस आखिए अवरना कोई करे बीजो सूजे को नहीं बह तुली चा पाए। नरक निवारण नर नर साचो साचे नाए। वन त्रिण ढूंढत फिर रही मन में करो विचार लाल रतन लाल रतन बहुमान की सतगुर हाथ भंडार। ऊतम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाह ले परथाए। रचना राच जिन रची जिन सिरियाया कार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार। राड़ै रूड़ा हर जियो सोई तिस्मिन राजा अवर ना कोई। राड़ै गारड़ तुम सुनो हर वस है मन माहे गुर प्रसादी हर पाई है। मत को परम पुलाहे सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास। रूड़ी बाणी हर पाया गुरसबदी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार। सोइना रूपा संची है तन का चा बिखशार साहो सदाए संच तन दुबदा होए खुआर। सचियारी सच संचया साचो नाम अमोल हर निर्माइल उजलो पत साची सच बोल। साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकर मन वसै हम बलिहारी तिस। माया ममता मोहनी जिनकी ती सो जान बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान। खेमा में होने खप गए खून लाख्या संख गणत ना आवे क्यों गणी खप खप मोए बिसंख। खसम पछाण अपना खुले बंद ना पाए शब्द महली खरा तू खेमा सच सुख पाए। खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन तीर। हम मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंतो पाए विच पायन करता अलग अपार। सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करे सो निश्चय होए संपै कोई सिर त्याई है संपै पुरब लिखे की पाई है। संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चालै होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवे छुटे निदान। हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हाँ हाँ करती मैं मुई शब्द रवे मन ज्ञान। हार डोर कंकन कणे करथा की सिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार। नानक गुरमुख पाईए हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो मन विचार। हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर ध्याईए हर का नाम आधार। लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया कर।

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त पाया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार।

एत उत किस कहो जान समावै, कवन ध्यान मन मने समावै। हां हां मैं विचों खोवै, दूजा मिटै एको होवै। जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाइए खाइए सार। अंतर बाहर एको जाणै, नानक अगर मरै सतगुर कै पाणै। सच पैराता गर्भ निवारै, एको जाता शब्द विचारै। शब्द वसै सच अंतर ही आता।

अभ्यागते है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनास, रसना हरसना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवे दासन दास। ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबे न छोड़े पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरता, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग बारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजिया नो, पाप उन गणत गणीनी, जिस बजाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीज

नाम जपे नामो वारादे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता ना है किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथो हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनो बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख सह प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणिया कहानिया पुत सपुत करेन। जे सतगुर पावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानके आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लाया न मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात स्पीति। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखे खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। सास्त वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे। लोक मुहावे चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए। ऐसा हिंदू वेखो कोए। जोगी गिरही जटा बिभूत आगे पाछे रोवे पूत। जोग ना पाया जुगत गवाई कित कारण सरशाई पाई। नानक काल का एहो प्रवान आपे आखण आपे जान। महला पहला हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पढ़ गल पावै सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई मुसलमान करे वड़ियाई। विण गुर पीरै को थाए न पाई। राहो दसाए उथे को जाए करनी बाजाओ पिस ना पाए। जोगी कह कर जुगत दसाई तित कारण कर मुंद्रा पाई। मुंद्रा पाए फिर संसार जिथे किथे सृजनहार। जेते जीते ते वाटाऊ चीरी आई टिल ना काऊ। एथे जाने सो जाए सजाने होर फकर होर फकड़। हिंदू मुसलमान है सबना का दर लेखा होए। करनी बाजो तरे न कोए सचो सच वखाने कोए। नानक अगे पुछ न होए। पौड़ी हर का मंदिर आखिए काया कोटगढ़। अंदर लाल जवेहरी गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदिर शरीर अत सोहना हर हर नाम दिड़। मन मुखे आप खोआयन माया मोह नित कड़। सबना साहब एक है पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਤ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤ ਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰੈ, ਨਾ ਸਤ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ, ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰੈ, ਨਾ ਸਤ ਰੁਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ, ਆਪ ਤਸ਼ਾਵੈ ਦੁਖ ਸਹੈ, ਨਾ ਸਤ ਹਸਤੀ ਬੱਧੇ ਸੰਗਲ, ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਘਾਉ ਚਰੈ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਸਿੱਧ ਦੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਤਸਿਆਏ ਮਿਲੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ, ਜਿਸ ਘਟ ਪੀਤਰ ਸਬਦ ਰਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਹਉ ਸਭ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਸੈ ਖੁਆਈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਕਹੈ, ਜਿਸੈ ਦਿਖਾਲਾ ਵਾਟੜੀ ਤਿਸੈ ਭੁਲਾਵੈ ਕੌਣ, ਜਿਸੈ ਭੁਲਾਈ ਪੰਧ ਸਿਰ ਤਿਸ

बोले गोरख सत स्वरूप परम तंत मैं रेख ना रूप महला पहला। सो उदासी जे पाले उदास अर्ध उर्ध करे निरंजन वास चंद सूरज।

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त को नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम कर रह ता नानक आख गुर को कह छे वरतारे वरत पूत ना संसारी ना अवधूत निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एतक माण है सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखैरे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवन जान न सुजई भीड़ी गली फही कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आपै हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै गुर प्रसादी साला ही है। हर भक्ति रापै सब मंतन हरिया होया अहंकार गवापै सब किश हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परसराम रोवै घर आया अजय सो रो

और दसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवै पांडव पए मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवै जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया। रोवै सेख मसा एक पीर अंतकाल मत लागे पीड़। रोवै राजे कन पड़ाए कर कर मांगै पीखिया जाए। रोवै किरपन संचय तन जाए पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवर कारा सब बाद। नानक मन्या मन्या बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वरतदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है आपे दे वडियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा नानक अंदा होए कै रतना परखण जाए। रतना सार ना जानई आवै आप लखाए। महला दूजा रतना केरी गुथली रतनी खोली आए। वखर तैवन जा रिया दुहां रही समाए। जिन गुण पल्लै नानका माणक बन जैसे। रतना सार न जानई अंधे वत्तै लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखी जय। बजरक पाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब मैं ए

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वडपात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हों तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवां मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तोहे। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मिले प्रीतम मोहे गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़िया वरना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोई ना किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे ना। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सद बलिहार।

उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितिया न सौपे जिस भंडार फिर पुछ ना लीतिया न जिसनो लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार एका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हां बलिहारी तेनू जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एको मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कन्न समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जनतारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही पोगे पोग महला पंजवा मनमुखा केरी दोस्ती माया कासन बंद।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगै सिजई।

जे सिमरन करै तू केलो दीपक बान धरियो बिनतेल सो दीपक अमरक संसार काम क्रोध बेका डीले मार। जे सिमरन तेरी गत होए सो सिमरन रख कंठ पर होए सो सिमरन कर नहीं राखो तार गुरप्रसादी उतरै पार। जे सिमरन नाही तोहे कान मंदर सोवै पटंबर तान से सुखाली बिकसै जियो सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए सिमर सिमर हर हर मन गाइयै एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास ग्रास जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइयै संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार सो सिमरन राम नाम आधार कहे कबीर जाका नहीं अंत तिसके आगे तंत न मंत। राम करी कर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया मुक्तै गुर अनल बुझाया। जब नख सिख एहो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत ओन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ। उल्टी ले सख्त सहारंग पैसी ले गगन मझारंग बेदिया ले चक्र पयंगा पेटिया ले राय नसंगा। चूकिया ले मोह मयासा सस कीनो सूर गिरासा जब कुंभक भरपुर लीना तह बाजे अनहद बीणा। बगतै बग शब्द सुनाया सुनतै सुन मन बसाया कर करता उतर सपारंग कह कबीरा सारंग। चंद सूरज दोय जो स्वरूप ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार ज्योति अंतर धरिया पसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश कह कबीर निरंजना लेख। दुनिया होशियार बेदार जागत मुसीयत हौरे पाई निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ। नींब पयो आंब आंब पयो नींबा केला पाका चार नालियेर फल से बरपाका मूर्ख मुग्ध गवार। हर पयो खांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुन्यो ना जाई कह कमीर कुल जात पाता जो चीटी होए चुन खाई। बाणी नाम देव जियो की राम कली कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनी ले कागद काटी ले गुडी आकाश मदे भरमी अले पंच जना स्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले। मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रहाओ। आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीये हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखी अले। मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अले। कहत नाम देव सुनो तिलोचन बालक पालन पौडी अले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखी अले। वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो। बैरागी राम गावो गो शब्दा तीता नह दराता या कुल कह कर जाओ गो रहाओ। एड़ा पिंगला और सुख

आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए, कठि पितर नाओगो, पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावोगो, नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध।

पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करे, तन जौ हिवाले गारे, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै, जथ रथ राय नंद राजा मेरा रामचंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै, देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बाडो कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई, संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदया नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजै ज्ञान दुरमत सीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ, दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती, जागत रह सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हिरदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंगा है, जागत रह न अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत, कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे, असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जगन्नाथ्यो गोष्ठ करै, चौ मुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै, मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे, दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

किल बिख दोख गए सब निकर ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावै मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर मैं एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवै हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जा चौ मैं मूड मुग्ध निस्तरे। किरपा किरपा धार जग जीवन रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जप्यो गुर बचनी हर तारी हर कृपले। रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिलो सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले। उनमें कहन कहन कहन हर गरजे मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे। रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो हर दियो नाम मुखे। हर गुनी ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी सब तिनके पाप क्रिखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण खे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे। रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पाप गे। तुमरी संगत हर

जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा मन मेर संत संगत सुभवंती सुनया कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हाँ कुरबानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सा पूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई यान सुनावै हर की हर गाल तिसको हाँ बल बल बाल सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुरसंत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो नेह कपट कमावो हर की हर काल। निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल। जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट है दूर। निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम हाउ क्या जाना क्या पावै मन प्यास बहुत दर्शावै। रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवै। कृपा करो जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तू त्यावै। कवन योग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी री जावै। सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै। साई मत साई बुद्ध स्याणप जित निमख ना प्रभ बिसरावै। संत संग लगे हो सुख पायो हर गुण सद ही गावै। देखियो अचरज महा मंगल रूप किश अन नहीं दिष्टावै। कहो नानक मोरचा गुर लाहे हो तै गर्भ जोन कै आवै। नट नारायण

आठ पहर गुण गायण रहाओ, साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा।

चरण कमल शरण सुख सागर नानक सद कुरबान। नट महला पंजवा हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ। मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीना ना दयाल। उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण तन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल। नट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत। बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मन तन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत संग चरण कमल मन सीत। कर कृपा हर जस दीत हर पाजो जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदियां महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे खिन पल रह न सको बिन सेवा। मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो मैं हर हर नाम प्यारे। दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर गुर के शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकर अगम अपारे। एक बिनो बेनती करो गुर आगे मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो प्रभ एको पुरख निरारे। सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उरतारे। हर हर कथा बनी अत मीठी ज्यों गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे अत फीके लोभ बेकारे। जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे मेरे ठाकुर के जन प्यारे। सास सास सास है जेते मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी मोको हर जन मिल प्यारे। नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा राम हम पाथर निर्गुणियारे। कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पहन शब्द गुरतारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा मैला गर्म लगारे। ना मैं सुरत वजी है दय दसो हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे। गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया संको तारे। सतगुर मिलिया परम पद पाया हों सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर भरमे लोभ पाखंड जग बुरियारे। हलत पलत दुखदाई होवै जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवै दिन सियाल जल संभालै बिख माया के बिस्थारे। आई रहन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारे। साग तनार सब पुख पुखाने दर ठंडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे। जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर उपाए नक खीनी सब नथ हारे। नानक प्रभ खिंचे तिव चलिए ज्यो भावे राम प्यारे। नट महला चौथा राम हर अमृत सर नावारे। सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको मिल करमल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई पढ़ सुवा गण को धारे। परसन परस पय कुबजा कहो लै बैकुंठ सिधारे। अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी कर नारायण बोलारे। मेरे ठाकर कै मन पाए भावनी जम कंकर मार बेदारे। मानुख कथै कथ लोक सुनावै जो बोलै सो ना बिचारे। सत संगत मिलै ता दृढ़ता आवै हर राम नाम।

जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किछ ना समारे। जब घर मंदिर आग लगानी कड कूप कड्डे पनिहारे। सागर स्योमन मेल न करियो जिन हर हर नाम बिसारे। साकत बचन बिशुआ ज्यों डसी है तज साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग देह सो होवे क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यो कुंचर तंदुऐ पकर चलायो कर उपर कड निस्तारे। रहाओ प्रभु के सेवक बहुत अत नीके मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभु सरदा भगत मन भावे जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई ब्रह्म पूला मिर्ग सिंघारे। बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी गुरपूरे कर निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मान प्रतख गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे। ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लू की जा रे। प्रभ को जन अंतर रिद लोचै प्रभ जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे। अपने आप प्रभ ठाकर प्रभ आपे सृट।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग भृंग कुंचर मीन, एक इंद्री पगर संघारे, पंच भूत सबल है देही, गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सो देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहन कनहारे। साकत कौ अमृत भौ सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत है संत मिलै मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कह दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया हम राख राख दीन तेरे हर सन हर प्रब आया शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छलन आया प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया हर हार हर उर तारो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंतन राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता राम रसायन।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम मैं, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेण न आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध पया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला।

मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलियो गुरपुरे, गुरबचन बिकानो हट हाट, मकर प्राग दान बहु किया, शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावे, बहु कंचन दीजे कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लच लज पानी मटकी माट, कलयुग गुरपुरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट, जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार, रहाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरखिया पार, नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार, एक परम पूले सागता, बिन गुर अंध अंधार, तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार, अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार, माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवते उधार, रहाओ जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप, जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कबलादास, जा कै सिमरन निद निदान, जा कै सिमरन तरे निदान, पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी, हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण, माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम, रहाओ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखै खीर, जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखे बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग, गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास।

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोहे बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा से ओ कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हम बलिहार जास मिल होवे उधार नाम संग।

हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाई है जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रव समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिनह था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत की ने पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अग मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक।

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, भणत नानक।

तौ देवा ना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ देवा ना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू देह।

मेरे मन गुरमुख नाम हर ध्याए, सदा हर चरनी लाग रहा, एक मन एक है पाए रहाओ। ना मैं जात ना पात है, ना मैं थे हो ना थाओ, शब्द भेद भ्रम कटिया, गुरु नाम दिया समझाए। एहो मन लालच करदा फिरे, लालच लागा जाए, धंधे कूड व्यापिया, जंपर चोटां खाए। नानक सब कुछ आपे आप है, दूजा नाही कोए, भगत खजाना बख्सियोन, गुरमुखा सुख होए। मारू महला तीजा, सच रते से टोल लहो, से वरले संसार, तिन मिलिया मुख उजला, जप नाम मुरार। बाबा साचा साहेब हृदय समाल, सतगुर अपना पुछ देख, लेहो वखर पाल रहाओ। एक सच्चा सब सेम दी, तुर भाग मिलावा होए, गुरमुख मिले से ना विछड़ाए, पावे सच सोए। एक भगती सार न जाननी, मनमुख भरम भुलाए, ओना विच आप वरतदा, करना किछु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई, खले कीचे अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसै, ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा, मारू ते शीतल करे, मनूरो कंचन होए, सो साचा साला ही है, तिस जे वड्यावर ना कोए। मेरे मन आंदन त्याए हर नाओ, सतगुर कै बचन आराध तू, आंदन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख एको जानिए, जा सतगुर दे बुझाए, सो सतगुर सालाहीए, जिदू एह सो जी पाए। सतगुर छोड़ दूजे लगे, क्या करने अगे जाए, जंपर बदे मारिए, बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभ वे प्रवाहो है, ना तिस्ते ना तमाए, नानक ते सरनाई भज पाओ, आपे बख्श मिलाए। मारू महला चौथा, कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद, जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी, हर हर सरन परे। दालद पंज सुदामे मिलियो, भगती पाए तरे, भगत वचल हर नाम किरतार्थ, गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदरे, ध्रुव प्रहलाद बिदरदासी सुत, गुरमुख नाम तरे रहाओ। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उदरे, नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन, सब दोह गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे, सब किल बिख पाप टरे, जो जो नाम जपै अपराधी, सब तिनके दोख पर हरे। बेसवा रवत अजामल उदरयो, मुख बोले नारायण नर हरे, नाम जपत उग्रसैन गत पाई, तोड़ बंधन मुक्त करे। जन कौ आप अनुग्रह किया, हर अंगीकार करे, सेवक पैज रखे मेरा गोविंद, सरन परे उदरे। जन नानक हर कृपा तारी, उर धरयो नाम हरे, मारू महला चौथा, सिद्ध समाध जपयो लिवलाई, साधक मुन जपया, जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्राद करव्या। सरन परे जपयो ते पाए, गुरमुख पार पाया, मेरे मन नाम जप तरिया। तन्ना जट बालमीक बटवारा, गुरमुख पार पया रहाओ। सुरनर गण गंधर्वे जपियो, रिख बपरै हर गाया, शंकर ब्रह्मै देवी जपियो, मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिन्ना मन पीना, ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीसते आयो, हर जपते अंत ना पाया, वेद प्राण सिमरत हर जपया। मुख पंडित हर गाया, नाम रसाल जिन्ना मन वसिया, ते गुरमुख पार पया। अंत तरंगी नाम जिन जपया, मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए, जो हर प्रभ मन पाया। गुरतार कृपा हर नाम दृढ़ायो, जन नानक नाम लया।

जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिया दुत्तर संसारी सतगुर बोहित दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरपौ निरंकार सतनाम जग में सृष्टि उत्तम काम दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो हर सेवक नेड़ ना जाई जियो जिस उपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया

सगल ले शलिया, निर्भव निरंकार दयालिया, जी जंतु सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाड़ी गढ़ है, एक है सुपन है दाम ना छड़ है, राज कमाए करी जिन थैली, ता कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी, एक संची तजबा महतारी, सुत मीत प्राते गुहजी, ता कह निकट ना हुई खलिया। होए अदूत बैठे लाए तारी, जोगी जति पंडित बिचारी, ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते, ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके, हर हर नाम बस्यो जीता कै, साध संग पहे जन मुक्ते, गत पाई नानक नदर निहलिया। मारू महला पंजवा, सिमरो एक निरंजन सोऊ, जाते बिरथा जात ना को, मात गर्व मैं जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे साई सुवारिया। सोई विधाता खिन खिन जपिए, जिस सिमर तो अवगुण सब ढकी है,

पूर्ण त्रिप्त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग मान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखान हर भजन तत् ज्ञान मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो नाहार मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदपो हर एक नानक कियो मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राख लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राख बूध बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतु किया प्रभ करण करने एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन।

रहाओ। साध संगत गुण उच्चारण हर नाम अमृत पाथ, करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ। मारू अंजलि महला पंजवा कर सतवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया। जिथै अगन पखै पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे, सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया। विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया, आवै जाए पवाई है जोनी रहन किथी थाए पया। मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया। मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैनो ना पाई, एको सहाई राम है कीता जिसो होवै, पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान है। कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है, आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है। भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा, करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा, हर को नाम सदा सुखदाई जां कौ सिमर अजा मल उदरियो, गन का हूं गत पाई रहाओ। पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई, कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई। मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई, सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ। काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई, राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई। जो संपत्ति अपनी करमानी छन में पई पराई, कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई। मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो, माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ। जम को डंड परयो सिर उपर तब सोब तै जाग्यो, कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन भाग्यो। एह चिंता उपजी घट में जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस।

ना जाना सियाणा सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाणा। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविद वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्यापिया चिंदा। गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने, घट घट राम हाली है। संसार में सहसा व्यापै, अकथ कथा गोचर नहीं जापै। जिसे बुझाए सोई बूझे, ओह बालक वांगी पाली है। छोड़ बह तो छूटे नाही, जो सिंचे तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राख, तिस साधु चौर ढाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागे तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल माने, बुझ हुक्मे दुरमत जाली है। जित जित लावे, तित तित लगना। कर कर वेखे अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवा, बिरखे हेठ सब जनते इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त्या दोत पया उठ चले, ज्यो ज्यो औद विहानिया। पाप करेंदर सर पर मुठे, अजरा ईल फड़े फड़ कुठे। दोजग पाए सृजनहार, लेखा मंगे बाणिया। संग न कोई पहिया बेबा, माल जोबन तन छोड़ वंजेसा। करन करीम न जातो करता, तिल पीड़े जो कहानिया। खुश खुश लेंदा वस्त पराई, वेखे सुने तेरे नाल खुदाई। दुनिया लब पया खाते अंदर, अगली गल न जानिया। जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्मे। जिन कीता तिसे न जानी अंदा, तां दुख सहे प्राणिया। खालक थावो पुला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा। सिदक सबूरी संतन मिलियो, वत्ते अपन पानिया। मौला खेल करे सब आपे, एक अड्डे कलैर वे आपे। ज्यो नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहानिया। मेहर करे ता खसम ते आई, संता संगत नरक ना पाई। अमृत नाम दान नानक कहो, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोल हे महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। साचा सच सोई अवर ना कोई, जिन सिर जीत नहीं फुन गोई। ज्यो पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है। आप यो

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है नासा कै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मछकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिन सो आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तन खो आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पानी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

ऐसा जय गुण प्रगासन जति सति संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लिख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाल है पार कर जो है कर नहीं पल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन स्यों लूझै। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपो बाल सिखाई है। आपे सुरग

नावों गत मित पाई है। गंगा जमुना केल केदारा कांसी कांतिपुरी द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचाकारी तख्त बह अदली प्रभ आपे परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अभुल ना कबहू भुला आपे मेहर दया पदाता ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई सब सह दाता तिल ना तुमाई भरपुर धार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमिया पार साचे सृजन हार मुरार जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिलै मेलाई है। ब्रह्मा विश्रम हेस द्वार है उबे सेवै लख्या पार है। होर केती दर दिसै बिल लांदी मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी होर ना दिसै वेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कह बेनंती दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज ना जाना शोहर बिन पर नींद ना पाई है। अंतर अग्न जलै पड़क हारे मनमुख तके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है। साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संघारे ज्ञान खड़गलै मन से लूजै मनसा मनै समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा मूर्त सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल बिगास हरे सर सुबर आत्म राम सिखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना परथाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सवाया जिन सिर आ तिन तंद लाया सच्चे उपर अवरना दिसै साचे कीमत पाई है। एथे गोयलड़ा दिन चारे खेल तमाशा तंदू कारे बाजी खेल गए बाजी गर जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई निरपो मन वसिया लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिभवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिलै सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीए सह साजी है क्यों सुख पावै दूवै तीय निर्मल एक निरंजन दाता गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता साचा रव रहा मन राता तिसकी ओट कही सुख पाया मन तन मैल ना काई है। जीव रसायन साचै राती हर प्रभ संगी पौ ना प्राती श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना जत कत देखो तेरी सरना दुख सुख देहे तू है मन पावै तुझ ही स्यो बने आई है। अंत काल को बेली नाही गुरमुख जाता तू सालाही नानक नाम रते बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला आज उगादी अपर अपार है आद निरंजन खसम हमार है साचे जो जुगत विचारी साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुग तंदूकार है ताड़ी लाई सृजनहार है सच नाम सची वड्याई साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख शरीरा सत सत वरत गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है।

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण, अंदन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौतावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, लै लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर लै चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सरदाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत न काई, हाँ मैं

अहनिस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जस संगत पाईऐ, हर सहजे सहज मिलाया। अंतर बाहर सो प्रभ जाना, रह लिपत चलते करियाना, ऊपर आदो सर्ब तिहो लोई, सच नानक अमृत रस पाया। मारू महला पहला, कुदरत करने हारिया पारा, कीते का नाही क्यों चारा। जियो पाए रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया। हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखां दूरे। गुपत प्रगट हर घट घट देखो, वरतै ताक सबाया। जिसको मेले सुरत समाए, गुरसबदी हर नाम ते आए। आनंद रूपा नूपा गोचर, गुर मिलिया परम जाया। मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाई चलन वारा। मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया। जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा। नानक गुर के चरण सिरेवो, जन भूला मार्ग पाया। संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा। जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगह जस गाया। सतगुर मिले ता महल बुलाए, साची दरगह गत पत पाए। साकत ठौर नाही हर मंदर, जन्म मरै दुख पाया। सेवो सतगुर समुंद अथाह, पावो नाम रतन तन लाहा। बिखिया मल जाए अमृत सर नावो, गुर सर संतोख पाया। सतगुर सेवो संक ना कीजै, आसा माहे निरास रही जै। संसा दुख बिनासन सेवो, फिर बाहुड़ रोग ना लाया। साचे पावै तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुर मूर्त का वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचै पुस्तक वेद पुराना, एक बै सुनै सुनावै काना। अज गर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया। करै विभूत लगावै भसमै, अंतर क्रोध चंडाल सोहमै। पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर लख ना पाया। तीर्थ वर्त नेम करै उदयाना, जत सत संयम कथै ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया। नियौली करम पयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड धर्म प्रीतनी हर सौ, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लिखाया। मारू सोल हे महला तीजा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सरेट पाई, कर कर वेखै अपनी वडियाई। आपे करे कराए आपे, हुक्मे रिया समाई हे। माया मोह जगत गुबारा, गुरमुख बूझै को विचारा। आपे नदर करे सो पाए, आपे मिल मिलाई हे। आपे मिले दे वडियाई, गुरप्रसादी कीमत पाई। मनमुख बहुत फिरै बिल लांदी, दूजै पाए खुवाई हे। हउमै माया विचे पाई, मनमुख पूले पत गवाई। सतगुर होवै सो नाए राचै, साचे रया समाई हे। गुरते ज्ञान ना वर्तन पाया, मनसा मार मनमाए समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई हे। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार भगती राता, सहज मते बने आई हे। दुख निवारण गुरते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जिसनो लाए सोई बुझै, पौ परम श्री रो जाई है। आपे गुरमुखे आपे देवै, सच्चै शब्द सतगुर सेवै। जरा जम तिस जोहे ना साकै, साचे स्यों बने आई है। तृष्णा यगन जलै संसारा, जल जल खपै बहुत बेकारा। मनमुख ठौर ना पाए कबहू, सतगुर बूझ बुझाई है। सतगुर

आपे बख्श लहै सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। एहो तन धरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वणज व्यापारा। सच धन जमया तोट ना आवै, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय, आपे बख्श लहै नाम दी जय। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई, गुर प्रसादी बूझै कोई। गुरमुख होवै सो तन पाए, सधी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोहे सो दना काई। मनमुख अंधे किशु ना सूझै, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हों मैं माया सूते, अपना कर ना संभालै अंत विगूते। पर निंदा करै बो चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल, नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा, एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जग काचा, गुरमती सदा सच सालाही। साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता, आपे लाए लाए जग जीवन दाता। आपे बख्शे दे वड़े आई।

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरै सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित सरीरा। बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझै, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है। पूरै सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई। सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी। साच सलाहे साच समावै, जिन गुरमुख एको जाता है। जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए। नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है। मारू सोल हे तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना। आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा। जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है। आपे हीरा रतन, आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो। जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरे न जम्मै चूकै फेरी। साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है। माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया। जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुन वरतै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा। गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा। पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे। मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है। हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए। हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है। जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए। गुण अवगुण का एक

गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साए सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह सोबा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिए, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर्ण रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रहै नित ताता, अकिरत घणै कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुए नाही, जिस जनाए तसै जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलहि कीने, ताकी कीमत कहन ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बधै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंधकूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन न जाई, अचल जरूब वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक

जे कर बन संसर किया ते पूरे संसार सार सुख पाइए रामा रंग रवो आत्मै राम रहाओ। जटा भस्म लेपन किया कहां गुफा मैं बास मन जीते जग जीतिया जाते बिख्या ते होए उदास। अंजन दे सबै कोई टुक चाहन माहे बिढान ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान कह कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए अंतर्गत हर पे।

मैं बोलत ही बड़लाज, राम जे पाया राम ते भवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहके कना दिन दुए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आयासा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जो आत्म भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुंदर पार, उदक समुंद सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुनने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रहा लिव सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोको तार कहां ले जई है, सोदो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन, जब जब आए केस ते पकड़े तै हर को नाम छावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रमनू रसपत इंद्री कया नमाना, बाबा अब ना बसो एह गाओ, करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ रहाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पा गए लै बांधे ओ जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अनपव होए वना हम बै, सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े, हुक्मै बूझे ता निरपव होए वना हम बै, हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े, पाखंड रता सब लोक वना हम बै, त्रिसना पासना छोड़ई बैरागी अड़े, ममता जालिया पिंड वना हम बै, चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े, जे मन मृतक होए वना हम बै, सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े, जे लोचे सब कोए वना हम बै, कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े, सहजे पावे सोए वना हम बै, कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े, मोको पौजल पार उतार वना हम बै, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे रहाओ, हस्ती देख परमते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत।

खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी कबीर को ठाकर अंत बिनोदी जातना काहू की मानी सलोक कबीर गगन दमामा बाजयो परयो निशा न काओ खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड खेत। कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चार मुक्त चार सिद्ध मिलके दूले प्रभ की शरण परयो मुक्त पयो चौहू जुग जानयो जस कीर्त माथे शतर तरयो। राजा राम जबत को ना तरयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगता को नाम परयो रहाओ। संख चक्र माला तिलक बराइत देख प्रताप जम डरयो निरपो पय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिरयो। अम्बरी कौ दियो अपह पद राज पीखन अध करयो नौ निध ठाकर दई सुदामै त्रु अटल अजहू न टरयो। भगत हेत मारियो हरनाक्ष नर सिंह रूप होय देह धरयो नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो। दीन बिसारियो रे दीवाने दीन बिसारियो रे पेट भरयो पशुआ ज्यों सोयो मनुख जन्म है हारयो रहाओ। साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदे झूठ स्वान सूकर बाय सजवै पटकत चालियो ऊठ आपस कहो।

मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रभलहो रे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमहो रे। अंतर काय अभिमान जोर तू किश किश किश जानता, एहो दूर करो अपन गहोरे। जन नानक कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रे रंग देखै, जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बेडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी। केदारा महला पंजवां कर तीजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिना सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी, एक मन अनाथ नाथ राखो कृपाल रहाओ। अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो, उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल। शरण बंदन करना पते, पव हरण हर हर हर हरे। एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे परम मोह सागर लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवां कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मांगन कौ हरदान रहाओ। सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान। गोपाल दयाल गोविंद दमोदर निर्मल कथा ज्ञान, नानक कहो हर कै रंग रंगो, चरण कमल संग ध्यान। केदारा महला पंजवां, हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई कमन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रतपालय सगल संभालय, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विदाते घट घट तुझे दिखाओ। केदारा महला पंजवां, प्रे की प्रीत प्यारी, मगर मनै मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवां, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ। काड लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो, भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा, अहम बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दया लावड, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवां, हर बिन जन्मया कार्थ जात, तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ। तन जोबन संपै सुख पुगवै, संग ना निभत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जी होए सहात। केदारा महला पंजवां,
ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਚਾਲਸ ਸਾਥ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰਨਾਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਅਨਾਥਾ ਕੇ ਨਾਥ ਰਹਾਉ। ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਭੁਗਵਤ, ਨਹਿ ਨਿਬਹਤ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਖਾਤ, ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਥਿਆ ਗੋਚਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਾਥ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਸ਼ਤ, ਮਿਲੈ ਲਿਖਤ ਤੁਰ ਮਾਥ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਭਈ, ਆਨ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ਰਹਾਓ, ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ, ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਰਸਨਾ, ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ, ਬਿਦ ਤੀਖਣ ਸਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ, ਗਾਠ ਬਾਂਧ ਧਰੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮੈਂ ਖੋਰ, ਭਰਮ ਭੀਤ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕਰ, ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਆਪਣੀ ਓਰ ਰਹਾਓ, ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਚਾਰੋ ਤੋਹਰ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਇਥ, ਉਧਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ, ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਧਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਿਖੈ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਹਰ ਸਕਤ ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ, ਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹੋਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਭਏ ਕਲਮਲਹਾਨ ਰਹਾਓ, ਤਿਆਗ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ, ਕਾਲ ਸਿਰ ਪਰਜਾਨ, ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ, ਝੂਠ ਸਰ ਪਰਮਾਨ, ਸਤ ਪੁਰਖਿਆ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਹਿਰਦੈ ਤਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲਾਭ ਨਾਨਕ, ਬਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਕਲ ਕਲੇਸ ਨਾ ਕਛ ਵਿਆਪੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਉ, ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਆਪ ਰਾਖਿਓ, ਨੈ ਉਪਜਤੋ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਮਰੈ, ਤਿਸ ਦਹਿਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਜਸ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਸ਼ਾਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੋਤ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਜੀਵੈ, ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ਰਹਾਓ, ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨ, ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਹਕ ਖੋਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਹਾਸ਼ਰਮ ਪਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ, ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਆਨ ਲਾਗੇ, ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ, ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਰੱਖੋ ਕੰਠ ਪਰੋਤ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤੈ ਧੂਰ ਲੇ ਮੁਖ ਮਲੀ, ਗੁਣਾ ਅਚਿਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ, ਨੈ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਕਲੀ ਰਹਾਉ, ਗੁਰਬਚਨ ਕਾਰਜ ਸਰਪੂਰਨ, ਈਤ ਊਤ ਨਾ ਹਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਕ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ, ਬਿਖੈ ਅਗੰਨਾ ਜਲੀ, ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸ ਅਪਨੋ, ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਚੱਲੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ, ਕੋਟ ਸਾਂਤ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ, ਜਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਝੈ ਰਹਾਉ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਤਤ ਉਧਰੈ ਮੁਚੈ, ਰੇਣ ਜਨਕੀ ਲੱਗੀ ਮਸਤਕ, ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਪੀਤਰ, ਕੜਕਟੈ ਸਵਾਮੀ ਸੁਜੈ, ਸਰਨ ਦੇਵਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਬਹੁਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੁਜੈ। ਕੇਦਾਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਰਬੱਤਰ, ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਡਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੈ ਕਹਲਿਆ, ਹਰ ਗੁਣਿਤ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ,
हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही मीन बिशोहा नास है जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चात्रक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज करण प्रगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुभागा अंदन हर गुण गाही नानक दास कहै बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही सास बिना ज्योंदे होरी कत सोभा पावै दर्श बिहुना साध जानो खिन टिकन न आवै हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हरसक बैरागी नाम लिव लागी कतो ना जाए नखेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवै हो कृपाल नानके स्वामी हर चरण संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख बिचारे नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वछल सुन अंचलो गहया घट घट पुर समानिया सुख सागरो पाया सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे राग के दारा बाणी कबीर जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना तेरा जानु एक याद कोई काम क्रोध लोमो बिबरजत हर पद चीने सोई रहाओ राज गुण तम गुण सत गुण कही है एह तेरी सब माया चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया तीर्थ बरत नेम सो संजम सदा रह निकामा तृष्णा अरमाया परम चूका चितवत आत्म रामा जेह मंदिर दीपक प्रगासिया अंधकार तह नासा निरपव पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा किन्ही बनजिया का सीतांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बनजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची वस्त के भार चलाए पहुंचे जाए पंडारी आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी आपै दह दस आप चलावै निचल है व्यापारी मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी कहत कबीर सुनो रे संतहो निभी खेप हमारी री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो बोलो पहिया राम की दुहाई पीवो संतो सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ पै बिच पाओ पाए को बूझै हर रस पावै पाई जेते कट अमृत सब ही मैं पावै सह पियाई नगरी एक नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै तमन खीवा पाई अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी उबट चलन ते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी काम करो

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पैरव महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मनमुख।

प्रसाद परम पद पाया सब इच पुजावन हार रहाओ। सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताहे। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए। पहरो महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जम्मै सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई। मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरै दरबार। गुर कै शब्द मरै फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर सांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार। ज्यों तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले।

संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन कोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बहरे आयो ताए, अहेरा पायो कर के गाए। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा की नो दान, नानक कह कर केवल नाम। पैरो महला पंजवा, जे सौ लोच लोच खावाया, सागत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पीगे अधिक सुकाया। खड़ शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दैदस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गहना पाया, त्यों साकत ते को ना बरासाया। तित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रबणत बनाया। पैरो महला पंजवा, जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जिनै उपाए तिसको पीर। गुर गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जा की सदशाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल दीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत तन नह पारना, तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवा, आगे दय पाछै नारायण। मध पाग हर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र साउण। सुख सहजानंद ग्रह पाउण, रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे। प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे, जन्म जन्म के दुख निवारे। अनहद शब्द बजे दरबारे, कर किरपा प्रभ लिए मिलाए। नानक प्रभ शरणागत आए। पैरो महला पंजवा, कोट मनोरथ आवै हाथ, जब मार कै संगी पांथ। गंगा जल गुर गोबिंद नाम, जो सिमरै तिसकी गत होवै। पीवत बहुना जोन प्रमाम। रहाओ पूजा जाप ताप इशनान, सिमरत नाम पै नह काम। राजमहल साधन दरबार, सिमरत नाम पूर्ण आचार। नानक दास एहो किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सबसार। पैरो महला पंजवा, लेप न लागो तिल का मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप, पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम जन आप ते आया, याना पापी ओ आप चाया। प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला, निंद का माथा यहां हुआ काला। जन नानकी परमेसर सुनी अरदास, मलेश पापी पचया पया निराश।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरे दिल जी प्राण, पहरो महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभु का पाणा सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावै, निंदक कौ अगन में पावै, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचिया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पैरों महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सर मन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए, चहो मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो, दस अष्टी सिमरताए, सब मिले को एक बखाने, तव किस्ते कहो दुराए, अगह अगह बेअंत स्वामी, न कीम कीम कीम आए, जन नानक तन कै बल बल जाइए, जेह कट प्रगटी आए, पैरो महला पंजवा, निकट बुझै सो बुरा क्यों करै, बिख संचै नित डरता फिरै, है निकट यार भेद न पाया, बिन सतगुर सा मोही माया, नेड़े नेड़े सब को कहै, गुरमुख भेद बिरला को लहै, रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए, दर्ब हिरै मिथ्या कर खाए, पैठ गौरी हर संग ना जानिया, बाज गुरु है परम पुलानिया, निकट ना जाने बोले कूड़, माया मोहे मूठा है मूड़, अंतर वास्तव दिसंतर जाए, बाज गुरु है परम पुलाए, जिस मस्त कर्म लिखिया लिलाट, सदगुर सेवे खुले कपाट,
ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਟੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਵੈ ਕੋਏ, ਪਹਿਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੌਣ ਮਾਰੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਾਵ ਚਿਤਵਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਹੋਵੈ ਜੇਕਰੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ, ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਨਿਰਭਉ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤਿਨ ਪਉ ਦੂਰ ਕੀਆ ਏਕ ਪ੍ਰਾਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਨ ਹੋਏ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਦੂਜਾ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੈ।

जैसी ऊपर नजर करे करतार, ते जन के सब का इसवार, तिसका रखा एक को सोए, जन नानक पढ़ना सके कोए। पैरो महला पंजवा।

तौ करिया जे दूजा करता तौ करिया जे अन्याय को मरता तौ करिया जे कह जाने नाही क्या करिया जा भरपूर समाही तौ करिया जे किश होए तिंगाने तौ करिया जे भूल रजाने गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पै नानक सरनाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठे कैसे गवनहारी जील बिना कैसे बजर बाप नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहां को बगता बिन श्रवना कहां को सुनता बिन नेत्रा कहां को पेख है नाम बिना नर कहीं ना लिख है बिन विद्या कहां कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहां मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहां बैरागी बिन हो त्याग कहां को त्यागी बिन बस पंच कहां मन चूरे ना बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कखनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार भैरव महला पंजवा हों मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रसयानो बासन रोग पवर बिनसानो हेत्रो का सगल संसारा त्रिबद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कतै ना जावे पार ब्रह्म जिसकीनी दया बहां पकड़ रोगों कढ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नान गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवै ता महा आनंद चीत आवै ता सब दुख पंज चीत आवै ता सरदा पूरी चीत आवै ता कबै ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए रहाओ चीत आवै ता सर्ब को राजा चीत आवै ता पूरे काजा चीत आवै ता रंग गुलाल चीत आवै ता सदा निहाल चीत आवै ता सद धनवंता चीत आवै ता सद निपरंता चीत आवै ता सब रंग माणे चीत आवै ता चुकी काणे चीत आवै ता सहज कर पाया चीत आवै ता सुन समाया चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंगजीवी भाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नी करवासी हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल सोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे मांज पिता पुत्रल किन्नी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंग लीने पैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवै ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सफल पाए गुरु ते आए रहाओ
पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला। पैरव महला पंजवां, सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबसका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। रहाओ सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण। सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरव महला पंजवां, नाम लैत मन प्रगट पया। नाम लैत पाप तंते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठ सठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूड सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरव महला पंजवां, नमस्कार ता कौ लख बार। एहो मन दीजै ता कौ वार, सिमरन ता कै मिटै संताप। होए आनंद ना व्यापै ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृष्ट दुखडेरा टहै, अमृत नाम शीतल मन गहै। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरव महला पंजवां, मोहे दुहागन आप सिंगारी। रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुखर सगल संताप। गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद। कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जां कौ प्रगट भय गोपाल, तां कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम। जा कौ भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ता की रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवां, चितवत पाप ना आल के आवै। बेसवा भजत किशने शरमावै। सारो दिनस मजूरी करै, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै। माया लग पुलो संसार, आप पुलाया पुलावन हारै। राच रहया बिरथा व्योहार रहाओ।
पेखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवे, करने हारना जी मैं आवे, करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत ना कार्ज माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना, जिसके राखे होए हरे आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया, पैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साध शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई, तार ले सागर संसार रहाओ, जिन को लिखिया हर एहो निदान, से जंतर गै पावे मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, अगे मिले निथावे थाओ, जुगे जुगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप, जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभ सदी साथ, पैरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रव्या हर नाम, सदगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम्य मोला अप्रिय पार, रहाओ नाम हमारे निचल तनी, नाम की महिमा समय बनी, नाम हमारे पूरा साहो, नाम हमारे बेपरवाहो, नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का सुहाओ, नाम ना विसरे संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद, प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाक रहा दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तव प्रसाद रंग रस माणे, घट घट अंतर तुम्हें समाणे। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक ने तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटै हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिलै सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदर रंग। दिन दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापनहार। जा का हुक्म ना मिटै कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना में आधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारै फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्त जे पावे कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानके आया सो परवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जो नी भवना, संत की निंदा रोगी करना। संत की निंदा दुख सहाम, डान दैत निंद कौ जाम। संत संग करे जो बाद, तिन निंदे नाही के साध रहाओ।

निंदक की गत कत हु नाहे, आ बीजा पे ही खाहे। चोर जार जुआर दे बुरा, अनहोंदा पार निंदक सिर तरा। पार ब्रह्म के भगत निर्वैर, सो निस्तर जो पूजे पैर। आद पुरख निंदक पोलाया, नानक कीर्तना जाय मिटाया। पैरव महला पंजवा, नाम हमारे बेदर नाद। नाम हमारे पूरे काज, नाम हमारे पूजा देव। नाम हमारे गुर की सेव, गुरपुर दृढ़ हर नाम। सब ते उत्तम हर हर काम रहाओ। नाम हमारे मज्जन इशनान, नाम हमारे पूर्ण दान। नाम लैते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत। नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे तृप्त सो भोग। नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार। जाके मन वस्या प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक। मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जिस देवे नाओ। पैरव महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना। अनक पाप जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम। भगत अपने कहो देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय। करण करावन हार स्वामी, ताते बिरथा कोई ना जाए रहाओ। रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभ सोग। निथावे कहो तुम थान बैठा वो, दास अपने कहो भक्ति लावो। निमाने कहो जो दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुज्ञान। सगल पयान का पौ नस, जन अपने कह हर मन बस। पार ब्रह्म प्रभ सुख निधान, तत् ज्ञान हर अमृत नाम। कर कृपा संत टहले लाए, नानक साधु संग समाए। पैरव महला पंजवा, संत मंडल में हर मन वसै। संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में निर्मल दीत। संत संग हुए एक प्रीत, संत मंडल तहां का नाओ। पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ। संत मंडल में जन्म मरण रह, संत मंडल में जम किशु ना कह। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम वखाणी। संत मंडल का निचल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग हो मैं दुख नसा। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिर मैं बिनस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखै देकर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान भैरव महला पंजवां करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राए दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखाओ तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पैरव महला पंजवां मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसकै संग तरै संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जनाया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने भैरव महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागै नाम सुन तो जम दूरों भागै नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमर तो किस चाख ना जो है हर सिमर तो दैत देव ना पोहै हर सिमर तो मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो नारुदय हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरों महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रि पवन सार जाकै सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए
ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ, ਪਹਿਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ, ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪੁਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਪਹਿਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਬਿਆਦ, ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ,

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदवो लंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक पतंग।

रहाओ मिथ्या जिह बायवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस नाम हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कै बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं सिव न कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ कबहू तुरे तरंग नचावै। कबहू पाए पनियो ना पावै, कबहू खाट सुपेदी सुवावै। कबहू पूंपे आर ना पावै, पंत नाम देव एक नाम निस्तार है। जे गुर मिलै ते पार उतार है। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछै बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो, कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूड़कुटम परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहि सुभाए पयो बैरागी। रहाओ जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबदा जाए। कबहु ना टूट सो रया समाए, नामे चित लाया सच नाए। जैसी प्रीत बार क्यार माता, ऐसा हरसेती मन राता। प्रणवै नाम देव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। कर की नार त्या गए अंदा, पर नारी सो काल है तंदा। जैसे सिंबल देख सुआ बिकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का कार्य अग्नि माहे, जलत रह मिटवै कब नाहे। रहाओ हर की भगतना देखे जाए, मार्ग छोड़या मार्ग पाए। मूलों पूला आवे जाए, अमृत डार लाद बिख खाए। ज्यों बेसवा के परया खारा, कापर पहर करे सिंगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो पज पर है गुर की सरना। कहत नाम देव एह बिचार, इनबित संतो उतरो पार। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पछारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब बिगारे। राम नामा जप बो करै, हृदय हर जी को सिमरन धरै। रहाओ बसदा बस कीनी, सब राजे बिनती करै पटरानी।
ਪੂਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨੀ ਮਾਨੈ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਔਰ ਠਾਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਉਪਾਇਆ ਕਰ ਸਹਿ ਉਦ ਕਨੇਰੀ ਗਿਰਤਾਲ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਭੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ ਕਾਢ ਖੜਗ ਕਾਲ ਪੈ ਕੋਪਿਓ ਮੋਹੇ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੁਹੇ ਰਾਖੈ ਪੀਤ ਪਿਤਾਂਬਰ ਤੇ ਭਵਨ ਧਣੀ ਥੰਭ ਮਾਹੇ ਹਰ ਭਾਖੈ ਹਰ ਨਾਕਸੋ ਜਿਨ ਨਖੈ ਬਿਦਾਰਿਓ ਸੁਰ ਨਰ ਕੀਏ ਸੁਨਾਥਾ ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਨਰ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ ਅਪੈ ਪਦਦਾਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੈ ਸੁਨ ਬੇਨਾਮਾ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕੰਮਾ ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਬੰਧ ਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹਰ ਬੀਠਲਾ ਰਹਾਓ ਬਿਸਮਿਲ ਗਊ ਦੇਹੋ ਜੀ ਆਏ ਨਾਤਰ ਗਰਦਨ ਮਾਰੋ ਠਾਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਬਿਸਮਿਲ ਕੀਆ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਕਛੁ ਨਾ ਹੋਏ ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਚੜਿਓ ਹੰਕਾਰ ਗਜ ਹਸਤੀ ਦੀਨੋ ਚਮਕਾਰ ਰੁਦਨ ਕਰੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਏ ਛੋੜ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਪਜੈ ਖੁਦਾਏ ਨਾ ਹੋ ਤੇਰਾ ਪੂੰਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਪਿੰਡ ਪੜੈ ਤੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਰੈ ਗਜਿੰਦ ਸੁੰਡ ਕੀ ਚੋਟ ਨਾ ਮਾਇ ਉਬਰੈ ਹਰ ਕੀ ਓਟ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਰੈ ਸਲਾਮ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਮਲਿਆ ਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੇ ਹੋ ਨਾਮੇ ਸਰ ਪਰ ਸੋਨਾ ਲੇ ਹੋ ਮਾਲ ਲਿਓ ਤੋ ਦੋਜਕ ਭਰੋ ਤੀਨ ਛੋੜ ਦੁਨੀਆ ਕਉ ਭਰੋ ਪਾਵੋ ਬੇੜੀ ਹੱਥੋ ਤਾਲ ਨਾਮਾ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਗੰਗ ਜਮਨ ਜੋ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਤੋ ਨਾਮਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਸਾਤ ਘੜੀ ਜਾ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ ਅਜੋ ਨਾ ਆਇਓ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਤਣੀ ਪਾਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਏ ਲਾ ਗਰ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏ ਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਗਰੜ ਚੜੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਧਰਨ ਇਹ ਕੋਡੀ ਕਰੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਲੇ ਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੂਈ

अनजानत नाम वखाणी है, नानक विचारा क्या कहे, सब लोग सलाहे एक सह। सिर नानक लोका पाव है, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। बसंत महला पहला, सोने का चौका कंचन कुवार, रुपए की आकारा बहुत विस्तार, गंगा का उदक क्रंते की आग, गरड़ा खाना दूध स्यों गाड़। अरे मन लेखे कबहू ना पाए, जाम ना पीजे साच नाए रहाओ, दस अठ लिखे होवे पास, चारे वेद मुखा गर पाठ, पुरबी नावे वरना की दात, वर्त नेम करे दिन रात, काजी मुल्ला होवे सेख, जोगी जंगम पगवे पेख, को गृही कर्मा की संद, बिन बूझे सब खड़ियस बंद, जेते जी लिखी सरकार, करनी उपर हो बगसार, हुक्म करे मूर्ख गावार, नानक साचे के सिफत भंडार। बसंत महला तीजा, तीजा बस्त्र उतार दिगंबर होग, जटा तार क्या कमावे जोग, मन निर्मल नहीं दसवें द्वार, भ्रम भ्रम आवे मूड़ा वारो वार, एक त्यावो मूड मना, पार उतर जाए एक खिना रहाओ, सिमरत शास्त्र करै वखियाण, नादी बेदी पड़े पुराण, पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे, तिन कै रमैया नेड़ नाहे, जे को ऐसा संजमी होए, किरिया वसेख पूजा करे, अंतर लोभ मन बिखिया माहे, ओए निरंजन कैसे पाहे, कीता होवा करे क्या होए, जिसनो वाप चलाए सोए, नदर करे ता परम चुकाए, हुक्मे बूझे ता साचा पाए, जिस जीव अंतर मैला होए, तीर्थ पवै दिसंतर लोए, नानक मिलिए सतगुर संग, तौ पवजल के टूट संबंध। बसंत महला पहला, सगल पवन तेरी माया मोह, मैं अवरना दिसै सर्ब तोहो, तू सुरनाथा देवा देव, हर नाम मिलाए गुरचरण सेव, मेरे सुंदर गहर गंभीर लाल, गुरमुख राम नाम गुण गाए, तू अपरंपर सर्व पाल रहाओ, बिन साधना पाईए हर का संग, बिन गुर मैल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होए, गुर शब्द सलाहे साच सोए, जा कहो तू रख है रखन हार, सतगुरु मिलावे करे सार, बिख हम मैं ममता पर हराए, सब दुख बिनासे राम राय, ऊतम गातमित हर गुण शरीर, गुरमत प्रगटे राम नाम हीर, लिव लागी नाम ताई दूजा पाओ, जन नानक हर गुर गुर मिलाओ। बसंत महला पहला, मेरी सखी सहेली सुनहो पाए, मेरा पिरी सालू संग साए, ओह अलख ना लखिए कहो काए, गुर संग दिखायो राम राए, मिल सखी सहेली हर गुण बने, हर प्रभ संग खेल वर कामन, गुरमुख खोजत मन मने रहाओ, मन मुखी दुहागण नाहे पेओ, ओ कट कट रावे सर्व प्रेओ, गुरमुख थिर चीने संग देओ, गुरनाम दृढ़ाया जप जपेओ, बिन गुर भगत ना पाओ होए, बिन गुर संत ना संग दे, बिन गुर अंधले तंद रोए, मन गुरमुख निर्मल मल शब्द खोए, गुर मन मार्यो कर संजोग, अहिंस रावे भगत जोग, गुर संत सभा दुख मिटै रोग, जन नानक हर वर सहज जोग। बसंत महला पहला, आपे कुदरत करे साज, सच आप नबेड़े राज राज, गुरमति उत्तम संग साथ, हर नाम रसायन सहज आथ, मत बिसर सिरे मन राम बोल, अपरंपर अगमा गोचर गुरमुख, हर आप तुलाए तुल तोल रहाओ, गुरचरण सिरे वै गुर सिख तोर, गुरसेव तर

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवै नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जप तो कछ नहीं संताप, गोविंद जप तो समिट अंधेर, हर सिमर तो कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार जसार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपूरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिध एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोविंद रमण योग, जित रवे सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजा रिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने करथाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ। सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम,
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੁਰੈ ਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸ ਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਬੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਉ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ

सोई तुझै पछाण है, तेरियां भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवै और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावै जिसनो तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे बिखम तेरा है पाना, कहो नानक टह पया द्वारा रख ले वो मुगदया जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवा, मूल ना बुझै अपना सूजै, भरम व्यापी अहमनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभ ते होवै ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते कल मैं सुखिए से गनी, आवरियो पाओ ना को सूजै नानक तरिया गुरबचनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो या पीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की देह का ऐडानो, संग तिहार है कछु ना चल है ताहे कहां लपटानो, उस्त निंदा दो पर हर हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण एक पुरख भगवानो, बसंत महला नावा, पापी ही है मैं काम बसाए, मन चंचल जाते गयो ना जाए, रहाओ जोगी जंगम अरसन आस, सब ही पर डारिये फास, जेह जे हर को नाम समार, ते पवसागर उतरे पार, जन नानक हर की शरण आए, दीजे नाम रह गुण गाए, बसंत महला नावा, माई मैं तन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ, माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोहे परसना साकै गही भगत भगवान, जन्म जन्म का संसार चूकार, तन नाम जप पाया, तृष्णा सकल विनाशी मन ते नेज सुख माए समाया, जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै, कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै, बसंत महला नावा, मन कहां बिसार्यो राम नाम, तन बिनसै जम स्यो परे काम रहाओ, एहो जग तुए का पहार तैं साचा मानिया के विचार, तन दारा संपत गृह कै संग न चालै समझ लेहे, एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग, बसंत महला नावा, कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ियो नाहन अजहो जाग रहाओ, सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान, संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत, बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए, बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत, नाम बिसार ग्रह देख पीत, मनुआ डोलै चीता नीत, जग स्यों टूटी झूठ प्रीत, काम क्रोध बिख बज्र भार, नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ, कर बालू का कुमन घेर, बरखस बाणी बुध बुदा हेर, मात्र बूंद ते तर चक फेर, सर्ब जोत नामे की चेर, सर्ब उपाय गुरु सिर मोर, भगत करो पगला गौ तोर, नाम रता चाहो तुझे और, नाम दुराए चले सो चोर,
ਪਤ ਖੋਈ ਬਖਿਅੰਚਲ ਪਾਏ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਤੋ ਪਾਸਿਓ ਕਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨਸ ਪ੍ਰਭ ਰਜਾਏ। ਪੈ ਮਾਨੈ ਨਿਰਭਉ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਕਾਮਨ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰ ਭੋਗ, ਪਾਨ ਫੂਲ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਰੋਗ, ਖੀਲੈ ਬਿਕਸੈ ਤੇ ਤੋ ਸੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤ ਕੀਨਸ ਹੋਗ। ਕਾਪੜ ਪਹਿਰਸ ਅਧਿਕ ਸਿੰਗਾਰ, ਮਾਟੀ ਫੂਲੀ ਰੂਪ ਬੇਕਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਨਾ ਘਰ ਬਾਰ। ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਨਾਮ ਭਣੋ ਸੱਚ ਦੋਤ ਸਵਾਰ, ਪ੍ਰਿਉ ਸੇਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆ ਸਨਿਵਾਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਬਿਖਤਿਆ ਸਨਿਵਾਸ, ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਲਿਆ ਮਨ ਮੋਹੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਤੋਹੇ, ਨਾਨਕ ਠਾਂਡੇ ਚਾਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਪਰਮਸ ਆਏ ਜਾਏ, ਅਤ ਲੁਬਧ ਲੁਬਾਨੋ ਬਿਖੁ ਮਾਏ, ਨਏ ਅਸਰ ਦੀ ਸਹਿਕ ਪਾਏ, ਜੋ ਮੀਨ ਕੁੰਡਲੀਆ ਕੰਠ ਪਾਏ, ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਸਮਝ ਸੋ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਏ। ਰਹਾਓ ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਪਰਮਸ ਭਵਰ ਤਾਰ, ਬਿਲ ਬਿਰਥੇ ਚਾਹੈ ਬਹੁ ਬਿਕਾਰ, ਮੈਂਗਲ ਜਿਉ ਫਾਸਸ ਕਾਮਹਾਰ, ਕੜਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਓ ਸੀਸ ਮਾਰ, ਮਨ ਮੁਗਧੋ ਦਾਦਰ ਭਗਤਹੀਨ, ਦਰ ਪ੍ਰਹਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਲੀਨ, ਸਭ ਦੁਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣ ਹੈ ਬੀਨ, ਮਨ ਚਲੈ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕ ਰਾਖ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਰਾਤੇ ਪਤ ਨਾ ਸਾਖ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਆਪ ਰਾਖ, ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ।

सब हुक्म वरतै हुक्म समाए, दुख सुख सब ते सिर जाए। तू आ भुल ना भूलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए माता गाहे। तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह चै पर हर दोए। दूर दर्द माथे अमृत खाए, गुरमुख बूझे एक समाए। तेरे दर्शन को केती बिललाए, विरला को चीनस गुर शब्द मिलाए। रहाओ बेद वखाण कह एक कही है, ओह बेअंत अंत के लही है। एको करता जिन जा किया, बाज कला तर गगन तरिया। एको ज्ञान ध्यान तुन बाणी, एक निराल मवा कथ कहानी। एको शब्द सच्चा निशान, पूरे गुर ते जाने जान। एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुजुग सोई। अनहद राता एक

किया। मत पसमा दूले गर्भ जाहे, इन विद नांगे जोग नाहे। मूड़े काहे बिसार्यो तैं राम नाम, अंत काल तेरा आवै काम रहाओ। गुर पूछ तुम करो विचार, जै देखो तैं सरंग पाण। क्या हो आखां जां कछु नाहे, जात पात सब तेरे नाहे। काहे माल दर्ब देख गर्भ जाहे, चलती बार तेरो कछु नाहे। पंचमार चित रखो थाए, जोग जुगत की अह पाए। हम मैं पैखड़ तेरे मने माहे, हर ना चेतै मूड़े मुक्त जाहे। मत हर विसरिया जम वस पाहे, अंत काल मूड़े चोट खाए। गुर शब्द विचारै आप जाए, साच जोग मन वसै आए। जिन जियो पिंड दिता तिस चेतै नाहे, मड़ी मसाणी मूड़े जोग नाहे। गुरु नानक बोलै भली बाण, तुम हो सुजाके लियो पछाण। बसंत महला पहला, दुबदा दुरमत अदली कार। मनमुख परमै मंज गुबार, मन अंदला अंदली मत लागै। गुर करणी बिन भरम ना पागै रहाओ। मनमुख अंदले गुरमत ना पाई, पशु भय मान न जाई। लख चौरासी जन तो पाए, मेरे ठाकर पाणे सिरज समाए। सगली भूलै नहीं सबदा चार, सो समझै जिस गुर करतार। गुर के चाकर ठाकर पाणे, बख्श लिए नाहीं जमकाने। जिनकै हृदय को पाया, आपे मिले भ्रम चुकाया। बेमोहताज बेअंत अपारा, सच भतीजै करणै हारा। नानक पूले गुर समझावै, एक दिखावै साहि टिकावै। बसंत महला पहला, आपे पवरा फूल बेल, आपे संगत मीत मेल। ऐसी पवरा बासले, तरवर फूलै बन हरे रहाओ। आपे कवला कंत आप, आपे रावे शब्द थाप। आपे बछरू गऊ खीर, आपे मंदिर थम

बारंबार फरमाई, मेरे ठाकुर बाल तो एक आन, सतगुर मिला ता पूरा पाई है, भज राम नाम निशान रहाओ। एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया। मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमति कर पाया। दीना दीन दयाल पय है, जो कृष्ण बिद्र कर आया, मिल्यो सुदामा भावनी तार, सब किश आगे दालद पंज समाया। राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकर आ परखाई, जे सब साकत करे बखिली, एक रत्ती तिल ना कटाई। जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साकत खब ना सके, तिल अपने कर लू की लाई। जन को जन मिल सोभा पावे, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो हो वह दासन दासा। आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावे, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जल समावे। बसंत महला पंजवां, कर पहला दो तुगिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीकै होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संतां जाचौ चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गन का उदरी हर कहै तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद। बदक उदारियो खम परहार, कुबजा उंदरी अंगुष्ट तार, पिदर उदारियो दास्त पाए, रेमन तूपी हर ते आए। प्रहलाद रखी हर पैज आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्या अंत बार, रे मन सेव तू पर पार, तन्ने सेव्या बाल बुद्ध, त्रिलोचन गुरमिल पई सिद्ध। बेणी कहो गुर कियो प्रगास, रे मन तू पी हो ए दास, जय देव त्याग्यो अहं मेव, नाई उदरियो सैन सेव। मन डीग नांडो लै कहूं जाए, मन तू पी तरसे शरण पाए, जेह नगरो ठाकर की हो आप, से तै लीने भगत राख। तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोए, एह बिद देख मन लगा सेव, कबीर ते आयो एक रंग, नाम देव हर जियो बसै संग। रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। बसंत महला पंजवां, अनक जन्म प्रमे जोन माहे, हर सिमरन बिन नरक पाहे, भगत बिहुना खंड खंड, बिन बूझे जम देत डंड, गोविंद भजो मेरे सदा मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत रहाओ। संतोख ना आवत कहूं काज, तू बादर सब माया साज।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साज ना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन तै पाई है एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बद्दे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याईन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, खटखट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए रहाओ। द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यों कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कह पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर्म सुन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ रहाओ। पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहा पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडै मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्योर साए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹੇ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਜਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।

आगे कहो पंडित सूचा कम ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अगन के लूठे। अगन पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लागा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहुत सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ाओ पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरे बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना

नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा। लोभ लहर अत निजर बाजै काया डूबै केसवा। संसार समुंदे तार गोबिंदे तार लै बाप बीठला। रहाओ अनल बेड़ा हों खेव ना सकौ तेरा पार ना पाया बीठला। हो दयाल सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा। नामा कहे हों तार पी ना जाना मोको बहां दे बीठला। सहज अवल धूड़ मणि गाड़ी चालती पीछे तिनका लेकर हागती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर तोवन चाली लाडली। रहाओ तोबी तोवै बिरा बिराता हर चरण मेरा मन राता। पणत नाम देओ रम रहे अपने भगत पर कर दया। बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुजनता कशु नाहे पहरावा देखे उपजाहे। गर्भवती का नाही ठाओ तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भ बावली जैसे पांदव खूंब राज। तू तिस्ते खरी उतावली रहाओ जैसे कुरंक नहीं पायो पेद। तन सुगंध ढूंढे परदेस आप तन का जो करे विचार। तिस नहीं जम कंकर करे खुवार। पुत्र कलत्र का करे हंकार उठाकर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सह जियो पाछे किसे पुकारे पियो पियो। साधु की जौ लेहे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरह की जैसी तेरी चाल तेरी पुष्ट ऊपर चमकबाल। इस घर में है सो तू ढूंढ खाहे और किसी के तू मत ही जाहे। रहाओ चाकी चट्टे चून खाहे चाकी का चीथरा कहां ले जाहे। शीके पर तेरी बहुत डीठ मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ। कह कबीर भोग पले कीन मत को मारे ईट टेम। राग सारंग चौब दे महला पहला कर पहला एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर। अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। अपने ठाकर की हों चेरी चरण गहे जग जीवन प्रभ के हम मैं मारन बेरी। रहाओ पूरन परम ज्योत परमेश्वर प्रीतम प्राण हमारे। मोहन मोहे लिया मन मेरा समझ सो शब्द विचारे। मन मुख हीन होची मत झूठी मन तन पीर शरीरे। जबकि राम रंगी लहराती राम जपत मन तीरे। हाँ मैं छोड़ पई बैरागन तब साची सुरत समानी। अकोल निरंजन स्यो मन मानिया बिसरी लाज लुकानी। पूर्व वेख नाही तुम जैसे मेरे प्रीतम प्राण आधारा। हर कै नाम रती सुहागन नानक राम पतारा। सारंग महला पहला हर बिन क्यों रही है दुख व्यापै। जेहवा साधना फिकी रस बिन बिन प्रभ काल संतापै। रहाओ जब लग दर्शना परस है प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखते ही मन मानिया जल रस कमल बेगासी। ऊनव कनहर गरजै बरसै कोकल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग भयंगम कर पिर तन सोहागै। कुचर करूप कुनार कुलखनी तिरका सहज न जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए न जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सह सुहेली प्रभ देखत ही मन तीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण आधारा। रहाओ
ਇਨ ਬਿਦ ਹਰ ਮਿਲੀਐ ਵਰ ਕਾਮਨ ਤਨ ਸੁਹਾਗ ਪਿਆਰੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਸਹਿ ਸਾ ਚੂਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਨੈ ਅਭਮਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਉ ਹਿੰਸਾ ਲੋਭ ਵਿਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਰਵੈ ਵਰ ਕਾਮਨ ਪਿਰ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਜਾਰ ਹੋਵੈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਟੰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਰਸ ਨਾਹੀ ਦੁਬਦਾ ਕਰਮ ਬਿਕਾਰੀ ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਿਤ ਕਉ ਦੁਰੈ ਨਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਧਾਰੀ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈਐ ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਸਭ ਦੂਰ ਆਤਮ ਜੋਤ ਭਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਪੁਰਖ ਨਿਰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਹਜੂਰ ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਕੀਆ ਸਤਸੰਗਤ ਪੱਗ ਨਾਏ ਧੂਰ ਦੁਰਮਤ ਬਿਕਾਰ ਮਲੀਨ ਮਤ ਹੋਛੀ ਹਿਰਦਾ ਕਸੁੱਧ ਲਾਗਾ ਮੋਹਕੂਰ ਬਿਨਕਰਮਾ ਕਿਉ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਹਮ ਮੈਂ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਮਨ ਚੂਰ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀ ਮੰਗੋ ਸਤਸੰਗਤ ਪਗ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜਨ ਹਰ ਭੇਟਿਆ ਰਾਮ ਹਜੂਰ ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਨਾ ਜਾਈ ਤਰਨਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਰਹਾਓ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਵਿਚਾਰੀ ਅਨਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਰਬ ਕਲਾ

दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हाथ दान नित नित लेहो ना चीजै देह अंत काल जम मारै ठेह ऐसा दारू खाहे गवार जित खादे तेरे जाहे विकार अरहाओ अराज माल जोबन सब शाम अराथ फिरंदै दिसै थाम देह ना नाओ ना होवै जात उथै देहो एथै सब रात साध कर समदा तृष्णा क्यो तेल काम क्रोध अग्नि सो मेल होम जग अर पाठ पुराण ज्योतिष पावै सो प्रवाण तप कागद तेरा नाम निशान जिन कौ लिखिया हो निदान से तनवंत दिसै कर जाए नानक जननी धनी माए मलार महला पहला बागे कापड़ बोले बैन लम्मा नक काले तेरे नैन कबू साहिब देखिया पैन ऊंडा ऊंड चढ़ा समान साहिब समरथ तेरे तान जल थल डूंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर जिन तन साज दिए नाल खंब आत तृष्णा उड़ने की डंज नदर करे ता बंदा धीर ज्यो विखाले त्यो वेखा बीर ना एहो तन जाएगा ना जाहेंगे खंब पौने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर सच समावे एहो शरीर। मलार महला तीजा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम पुलाए कर कर करता आपे वेख जित पावै तित लाए सेव कौ या वड्याई जा कौ हुक्म नाए अपना पाणा आपे जाने गुर कृपा ते लहीऐ एहा सख्त सवै कर आवै जीवदे अमर रहीऐ रहाओ वेद पढ़े पढ़ वाद वखाने ब्रह्मा विष्णु महेशा एह त्रै गुण माया जिन जगत भुलाया जन मरण का सहिसा गुर प्रसादी एको जाने चूके मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख अविचारी तुम चिंता करो हमारी हो दयाल कर दास दासा का सेवा करी तुम्हारी एक निदान देह तू अपना अहनस नाम वखाणी कहत नानक गुर प्रसादी बूझो कोई ऐसा करे विचारा ज्यों जल ऊपर फेन बुदबुदा तैसा एहो संसारा जिसते होवा तिसै समाणा चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिनी हुक्म पछाणिया से मेले हमें शब्द जलाए सच्ची भगत करह जनराती सच रहे लिव लाए सदा सच हर वेख दे गुर कह शब्द सुवाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्से तिस बिघन न कोए रहाओ त्रै गुण सब बातात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना हो वई होमै कर्म कमाए साहिब पावै सोथी है पै किरत फिराए सतगुर भेटिया मन मर रह हर नाम वसै मन आए तिसकी कीमत ना पवै कहना किशु ना जाए चौथे पदवासा होया सच्चे रह सुमाए मेरा हर प्रभ अगमय गोचर है कीमत कह न जाए गुर प्रसादी बुझिए सब दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर सोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला बूझे जिसनों नजर करे गुरबिन दाता कोई नाही बख्से नजर करे गुर मिलिया सां तू पजै अंदर नाम लय मेरे मन हरे अमृत नाम ते आए सतगुर पुरख मिलै नाव पाईए हर नामे सदा समाए रहाओ मनमुख सदा विछड़े फिर है कोई ना किसी नाल हमें वड्डा रोग है सिर मारे जमकाल गुरमत सत संगत ना विछड़े अंध नाम संभाल सबना करता एक तू नित कर देखे विचार एक गुरमुख आप मिलाया बख्से भगत भंडार तू आपे सब कुछ जानदा किसे आगे करी पुकार हर हर

बरसे मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिद नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी ओ आया तो मैं सब सुख पाए। संत सभा उठ गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लग आए। मलार महला पंजवा खीरा दार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता, भूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की, सर्प अग्न कर मेले, माता पिता कंठ लाए राखे आनंद सही तब खेले। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी, तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा, मन बांछ सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी, बारक मुख मांगे सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा, कार्य सगल अरंभ्यो घर का, ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजे बाज सुहावी, भोर भया मैं प्रे मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना, पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो, भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन, तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले, प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा, गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै, आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमय बो जोनी, टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघे कथ सागर, बिरथा कथत हम तरते। सेव बिरंच असुर सुर जेते, काल अग्न में जरते, नानक सरन चरण।

प्रेम भगत अपनो नाम दीजै, दयाला अनुग्रह धारे रहाओ। सिमरो चरण तुहारे प्रीतम, हृदय तुहारी आसा, संत जना पै करो बेनती, मन दर्शन की प्यासा। बिशरत मरण जीवन हर मिलते, जन को दर्शन दी जय, नामाधार जीवन तन नानक, प्रभ मेरे कृपा की जय। मलार महला पंजवां। आबे अपने प्रीतम स्यो बने आई, राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नमै निध पाई, अदोत भयो पूर्ण भावी को, भेटे संत सहाई। सुखी उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण ते आई। मलार महला पंजवां। कान हर बरस सगल जगशाया, भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहाओ। मिटे कलेस तृष्ण सब पूजी, पार ब्रह्म अंत्याया, साध संग जन मर निवारे, बहुर न कथूं ताया। मन तन नाम निरंजन रतो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवां। बिशरत क्यों जीवन ओए जीवन, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन, चितह उलास आस मिल बेकी, चरण कमल रस पीवन रहाओ। जिन कौ प्यास तुम्हारी प्रीतम, तिन कौ अंतर नाही, जिन कौ बिसरै मेरो राम प्यारा, से मुए मर जाही। मन तन रव रहया जगदीशर, पेखत सदा हजूरे, नानक रव रहयो सब अंतर, सर्ब रहया पर पूरे। मलार महला पंजवां। हर कै भजन कौन कौन ना तारे, खग तन मीर तन मृग तन ब्राह तन, साधु संग उधारे रहाओ। देव कुल दैत कुल, जख किन्नर नर, सागर उतरे पारे, जो जो भजन करे साधु संग, ताके दुख बिदारे। काम क्रोध महा बिखिया रस, इनते पै निरारे, दीन दयाल जपै करना मैं, नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवां। आज मैं बैस्यो हर हाट, नाम रास सांझी कर जन स्यो, जाओ ना जम कै घाट रहाओ। तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे, ब्रह्म के खुले कपाट, बेसुमार साहो प्रभ पाया, लाह चरण निदखाट। शरण गही अचत बनासी, किल विख काढे है शांट, काल कलेस मिटे दास नानक, बहुरना जोनी माट। मलार महला पंजवां। बहुबिद माया मोहे हैरानो, कोट मदे को बिरला सेवक, पूर्ण भगत चिरानो रहाओ। इत उत डोल डोल श्रम पायो, तन तन होत बिरानो, लोग दुराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो, कहो नानक पाहन प्रभ तारो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां। दुष्ट मोए बिख